सुप्रभात, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आज है दिन शुक्रवार, सक संवत 1948 के वैसाख महीने की 18वीं तिथि, तद अनुसार 8 मई सन 2026 आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार।
2: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार

0: 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें हम जानेंगे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखें। जानकारी दे रही है अनीता तिर्की।
2: मिट्टी की उर्वरता उसके भौतिक, रासायनिक और

0: जैविक गुणों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मिट्टी के द्वारा पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा व उपलब्ध अवस्था में आपूर्ति कर पानी की शक्ति को ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति कहते हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए यह नितांत आवश्यक है कि खाद्यान्न व खाद्य तेलों के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि की जाए, ताकि देश की बढ़ती जनसंख्या वर्ष 2025 तक 1.4 बिलियन के लिए 300 मिलियन टन अनाज आवश्यक है, जिसकी पूर्ति के लिए पिछले 2 दशकों के दौरान खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग के कारण कृषि भूमि का उपजाऊपन घटता जा रहा है। साथ ही कृषि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि उपज भी विषाक्त होती जा रही है। खेतों में गोबर की खाद और पशुओं के मल मूत्र तथा बिछावन का भी बहुत कम प्रयोग हो रहा है। परिणाम स्वरूप मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी होती जा रही है। मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी से उसमें उपस्थित लाभकारी जीवाणु और जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। इनकी ना उपस्थिति में मृदा में होने वाले विभिन्न अपघटन इत्यादि क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पोषक तत्वों और खनिज लवणों का बहुत बड़ा हिस्सा पौधों को प्राप्त नहीं हो सक रहा है। प्रतिवर्ष अपने देश में प्राथमिक पोषक तत्व का ह्रास होता जा रहा है। देश के अनेक कृषि क्षेत्रों में पौधों के लिए 3 मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग एक अनिश्चित अनुपात में किया जा रहा है, जबकि इसका आदर्श अनुपात 4:2:1 होता है। किसानों द्वारा खेती में लगातार एक ही प्रकार के उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी होती जा रही है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसलों की उपज में बहुत कमी आ गई है। इसी प्रकार धान, गेहूं फसल प्रणाली के अंतर्गत भूमि को आराम न मिल पाने के कारण कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात भी गड़बड़ा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा की उत्पादन क्षमता में काफी गिरावट देखी जा रही है। अत्यधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों के प्रयोग करने के बावजूद हमारे फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसका स्पष्ट कारण है मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों का अधिक दोहन, सघन फसल प्रणाली व जीवांश की कमी के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। खेती में हर वर्ष एक सा फसल चक्र होने के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम होते जा रही है। इसके मुख्य कारण ये भी हैं, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ में कमी, मिट्टी का कटाव और बंजर होना, मरुस्थल का अधिक होना, असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना, पोषक तत्व की कार्य दक्षता में कमी, विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के कारण जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों में प्रति फसलों की प्रतिक्रिया में कमी, ऋणात्मक पोषक तत्वों की बचत, फसल अवशेष को मिट्टी में ना मिलाकर चारा और जलावन के रूप में उपयोग करना या तो फसल अवशेष को जला देना, अत्यधिक चरवाही एवं गोबर का जलावन में उपयोग, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्षेत्र विशेषकर उर्वरक प्रबंधन, मृदा जांच के अनुसार उर्वरक प्रबंधन, सरकार के द्वारा उर्वरक नीति विधेयक क्षेत्र विशेष के अनुसार मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहने से किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा, उत्पादन खर्च कम आएगा, गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त होगा, भूमि में जीव जंतु और जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे पोषक तत्व जो हैं पौधों को अनुकूल रूप से मिलने लगेंगे, मृदा का प्रदूषण रुकेगा, मृदा सुधारक अपनाने से लगभग 50% रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से किसान भाई बच सकेंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें आज चर्चा का विषय था मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखें। जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।

0: सुबह तरोताजा जगने के लिए रात्रि की निद्रा प्रकृति का अनुपम उपहार है। शरीर और मन को उचित विश्राम नहीं मिलेगा तो व्यक्ति की आगामी गतिविधियां भलीभांति संपन्न करने के लिए स्फूर्ति न मिलेगी, अस्वस्थ होने के आसार बढ़ेंगे। समस्त प्राणियों में मनुष्य ही दैनंदिन ऊर्जावान जीवंत और स्वस्थ रक्ति निद्रा से सायास स्वयं को वंचित करता है। उचित नींद न लेने की अस्वस्थ प्रवृत्ति से कोई वर्ग अछूता नहीं है। स्कूली छात्रों को होमवर्क का दबाव, युवाओं को बेहतर करियर की बेसब्री, वयोवृद्धों को संतान की शिक्षा आजीविका उनके विवाह आदि की भी चिंता नींद उड़ा देती है। इंटरनेट बहुतेरों की नींद हर रहा है। दूसरे का हथियाने वाला बेहतर खा सकता है लेकिन अच्छी नींद देने वाले को ही आती है। मन उधेड़बुन में रहेगा तो नींद दुष्कर होगी। उचित विश्राम के बाद बहुधा समाधान प्रकट हो जाता है। निद्रा की आवश्यक मात्रा अलग अलग होती है। सामान्यतः रात्रि के लगभग 10 बजे से 6-7 घंटे की नींद सर्वोत्तम मानी गई है। जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए सलाह है कि वे बिस्तर छोड़कर काम में लग जाएं। जान लें कि वे अनिद्रा से नहीं बल्कि चिंता के रोग से पीड़ित हैं। मन मंदिर में कोई बड़ा स्पष्ट उद्देश्य प्रतिष्ठित होगा तो उस दिशा में निरंतर अग्रसर कर्मशील रहेंगे, सार्थकता और संतुष्टि का भाव रहेगा और नींद अच्छी आएगी। जितना अहम एक बड़े उद्देश्य को साधना है उतना ही आवश्यक शरीर एवं मन को विश्राम देना है ताकि दैनंदिन नई ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती रहे। गहरी नींद और खुला संवाद स्वास्थ्य के आधार हैं। मन में जितना प्रेम और मेलजोल का भाव होगा तो विकार कम आएंगे, चिंताओं समस्याओं से मुक्त रहेंगे और नींद अच्छी आएगी। जिस प्रकार भलाई में बिताया गया दिन खुशनुमा नींद लाता है उसी प्रकार परहित और सत्कारियों में बिताने वाले व्यक्ति का अंतकाल शांतिप्रद और तृप्तिदायी होगा।
1: ये था आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले सुनते हैं देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी मन्ना डे और साथियों के स्वर में।

भगवान का मार्ग कठिन है, लेकिन उनका नाम जपने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और हम उनकी ओर खींचे चले आते हैं।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आराधना यहीं पे संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

श्रीराम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी यह धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

7:05 पर वक्त होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। कार्यक्रम में आज का विषय होगा वर्तमान जीवन शैली और हड्डियों में दर्द। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अनुप मोहन नायर, भेंट करता है संजीव कुमार लाल। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुरीली, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म गीत। 7:45 पर वक्त होगा कार्यक्रम गांधी कथा का, संकलन गौरव शिखर रॉय की है, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की है। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज का समय होगा 8:15 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे 8:30 पर हमारे रांची केंद्र से। लोक रंग में आज आप सुनेंगे लोकगीत संथाली भाषा में, कलाकार हैं मनोहर महतो और साथी। समय होगा 8:45। 9:00 आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रसरंजन। शास्त्रीय संगीत का वक्त होगा 9:30 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग देसी में आलाप और धमार गायन। कलाकार हैं अभिराम पाठक। पखवाज पर संगत कर रहे हैं राम बच्चन पाठक और हारमोनियम पर साथ देंगे संचाली नाग। दस बजे वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी अमन में शफकत और नफस की पागेज की। शायर ए नशीक गुरुदेव टैगोर की अजमत को सलाम, मालगुड़ी का मुसमतवीर, आर के नारायण की अफसाना निगरी, मंटो एक बागी अदीब की दास्तान, मकाला अच्छी हुक्मरानी आवाम के खिदमत की बुनियाद, मकाला निगार महफूज आलम, कंपियर मोहम्मद हिदायतुल्ला और फौजिया तजी हैं, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की होगी। जोहार रांची का वक्त होगा सुबह के 10:30 पर और 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आपके पसंद के गीत। हमारी बहनों की कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का समय होगा 12:00, जिसमें आज चर्चा होगी सड़क सुरक्षा करे मानव जीवन की रक्षा। भेंट वार्ता आकाशवाणी 90 वर्षों की सुरीली यात्रा, भेंट करता राकेश शर्मा, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय होगा 12:30 पर। 1:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। अनुरंजनी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:20 पर। कार्यक्रम में हमारी आज के कलाकार हैं गिरिजा देवी। 1:45 पर समय होगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। मिड डे न्यूज आप सुन पाएंगे 2:00 और 2:15 पर आप सुनेंगे 2:00 समाचार। हमारे फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती का समय होगा 2:20 पर। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 3:00 आप सुनेंगे नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी। रांची मेलोडीज का समय तो आपको पता होगा 3:30 पर। 4:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 4:02 पर आप सुनेंगे पुनः उर्दू कार्यक्रम।

ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं।

0: है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज का विषय है वर्तमान जीवन शैली और हड्डियों में दर्द। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनुप मोहन नायर, उनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, मौसम परिवर्तन लेता रहता है, ये एक प्रकृति का नियम है। और जब मौसम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में परिवर्तन करता है, जैसे जाड़े से हम गर्मी में प्रवेश करते हैं और गर्मी के बाद जब जाड़े का मौसम शुरू होता है तो शरीर में कुछ परेशानियां भी बढ़ने लग जाती है। जहाँ हम बात कर रहे हैं हड्डियों से संबंधित परेशानियों, खासकर ठंड के समय में मौसम जब परिवर्तन लेता है, काफ़ी ठंड बढ़ जाती है या फिर बादल घिरने लगता है, तो ऐसे में हड्डियों में हलचल महसूस होती है, हड्डियाँ दर्द करने लगती है और फिर आपका जीवन प्रभावित होने लग जाता है। इन सारे विषयों पर बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे वर्तमान जीवन शैली के बारे में कि अपने जीवन शैली को कैसे व्यवस्थित करें। लगातार काम नहीं करें एक स्थान पर बैठ कर, क्योंकि लगातार काम करने से हड्डी में परेशानी शुरू होने लग जाती है, फिर आप दर्द से कराहने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वरिष्ठ हड्डी नस एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप मोहन नायर साहब से। अनूप मोहन नायर साहब, स्वागत है इस कार्यक्रम में। नायर साहब, सबसे पहले हम बात करें कि जब मौसम परिवर्तन लेता है, खासकर ठंड के मौसम में, तो कौन कौन सी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती है? खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो दर्द से कराहने लग जाते हैं, दर्द से परेशान होने लग जाते हैं।
2: मौसम एक चेंज है, जो एक्सटर्नल चेंज है, तो यूजुअली मैं अपने एक्सपीरियंसेस बहुत ड्रॉ करता हूँ हमारे संस्कृति से, हमारे पूर्वजों से। तो आजकल हम लोग जो बाहर का चेंज है, चाहे वो प्रेशर सिचुएशंस हो, साइकोलॉजिकल चेंज हो, तापमान, मेंटल तापमान की बात हो, या वो फिजिकल चेंजेस की बात हो, जैसे बाहर चेंज आ रहा है, उसके प्रति बहुत जागरूक और क्यूरियस नहीं है। वो जो बाहर के चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को थोड़ा चेंज नहीं करते, और वो चेंज नहीं करने की वजह से, उतना अवेयर नहीं होने की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे ठंड का मौसम आया और सडनली टेम्परेचर बढ़ गया, तो बहुत सारे पेशेंट्स आए जिनको मसल्स में अकड़न, जोड़ों में अकड़न, सडनली दर्द उठ जाना, एक दिन सुबह सोकर उठे, जल्दीबाजी में नहाए और कमर अकड़ गया और फिर 10 दिन काम नहीं कर पाए। तो ये क्यों होता है? इसका प्राइमरी कारण है कि मौसम चेंज हुआ, ठंडा आया, तो जो ब्लड फ्लो था अपने मसल्स का, अपने टेंडन्स का, लिगामेंट्स का, ये कम हो गया। स्पेशली जब हम लोग रेस्ट किए, जब हम लोग स्टैटिक हैं, स्थिर हैं, उस टाइम इस ब्लड फ्लो के कमने से वो अकड़न जो आई, उसको हमने उठकर थोड़ी देर रिलीव नहीं किया, अपने आप को स्ट्रेच नहीं किया, क्योंकि हमने अपना शरीर पर ध्यान नहीं दिया, सुने नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग सडनली कुछ मूवमेंट कर लिए और बढ़ गया दर्द। तो ये एक्सटर्नल चेंज के प्रति जागरूक अगर हो जाते हैं हम लोग इंटरनली, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी।
1: कैसे अपने आप को व्यवस्थित करें जब मौसम परिवर्तन लेता है, दर्द से हम अपने आप को बचाव कर पाए?
2: तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो अपने को करना है वो है कि प्रोटेक्शन लेना है। अब अगर सर्दी का समय आ गया, सडनली टेम्परेचर डिप कर गया, तो हम लोग अवेयर होकर तुरंत थोड़ा एक्स्ट्रा क्लोथिंग पहनकर रेस्ट करेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे, मिटन्स पहन लेंगे, स्पेशली जिनको गठिया है, जिनका एज 70 पार हो गया है, जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, वो वेल प्रोटेक्टेड रहे सोते वक्त, छोटा सा तकिया ही यूज़ किए, अपना काम का चीज़ जैसे मोबाइल, पानी वगैरह पास में रखे, रात को सडनली पानी पीने के लिए स्ट्रेच किए और कंधा अकड़ गया, ऐसा भी होता है। तो ये ब्लड फ्लो कम होने वाली सिचुएशन में हम लोग अपनी चीज़ें पास रखकर वेल क्लैड होकर सोएंगे तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है उठने पे, जैसे ही सो के उठते हैं लोग काम में लग जाते हैं, लेट हो गया, अलार्म बजा, फटाक से उठे, तो उस टाइम ज़रूरी है कि उठकर शांति से 5 मिनट बैठें। वो वैसे भी हमारे पूर्वज बताए हैं कि सुबह उठ के आपको शांति से बैठना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, अपना दिन के बारे में सोचना चाहिए। उस दौरान हम लोग अपने पैरों को, हाथ को हल्के से स्ट्रेच किए और ब्लड फ्लो को थोड़ा एस्टैब्लिश किए, उसके बाद जब अपना थोड़ा स्ट्रेचिंग हो गया, खून पैन दौड़ने लग गया, तो काम पे लग गए। और दूसरा चीज़ है प्रोटेक्शन, कोल्ड से लेने में पानी का, सुबह उठ के अगर हम लोग ठंडा पानी से नहा लिए या इनफ गर्म नहीं था पानी, या बहुत जल्दी नहाने चले गए, अपना स्ट्रेचिंग वगैरह

दोस्तों, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म प्रेमनगर से। संगीतकार हैं SD बर्मन और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: दोस्तों, कार्यक्रम सुबह सुरीली में आप सभी का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म सरगम से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।
5: मुझे मत रोको,

दोस्तों, फिल्म क्रांति का गीत आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में। बोल हैं संतोष आनंद के और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, अभी ना जाओ फिल्म हम दोनों से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, संगीत दिया है जयदेव ने और रचना है साहिर लुधियानवी की।

0: दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन है गौरव शिखर रॉय की और प्रस्तुति नूतन प्रसाद की है।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति है गौरव शिखर राय की। वह वाचन स्वर है अवनीश कुमार सिन्हा का।

हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांधी जी के ये वचन उनके जीवन में पूरी तरह झलकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वकालत के पेशे में रहते हुए उन्होंने सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ा।

प्रस्तुत है दक्षिण अफ्रीका में वकालत के पेशे में रहते हुए गांधी जी द्वारा सत्य रक्षा के कुछ प्रसंग, स्वयं गांधी जी के शब्दों में उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। वकालत के धंधे में मैंने कभी असत्य का प्रयोग नहीं किया और मेरी वकालत का बड़ा भाग केवल सेवा के लिए ही अर्पित था और उसके लिए जेब खर्च के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं लेता था, कभी कभी जेब खर्च भी छोड़ देता था। विद्यार्थी अवस्था में भी मैं यह सुना करता था कि वकालत का धंधा झूठ बोले बिना चल ही नहीं सकता। झूठ बोलकर मैं न तो कोई पद लेना चाहता था और न पैसा कमाना चाहता था, इसलिए इन बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। दक्षिण अफ्रीका में इसकी परीक्षा तो बहुत बार हो चुकी थी। मैं जानता था कि प्रतिपक्ष के साक्षियों को सिखाया पढ़ाया गया है और यदि मैं मुवक्किल को अथवा साक्षी को तनिक भी झूठ न बोलने के लिए प्रोत्साहित कर दूं तो मुवक्किल के केस में कामयाबी मिल सकती है, किंतु मैंने हमेशा इस लालच को छोड़ा है। मुझे ऐसी एक घटना याद है कि जब मुवक्किल का मुकदमा जीतने के बाद मुझे यह शक हुआ कि मुवक्किल ने मुझे धोखा दिया है। मेरे दिल में भी हमेशा यही ख्याल बना रहता था कि अगर मुवक्किल का केस सच्चा हो तो उसमें जीत मिले और झूठे हो तो उनकी हार हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि फीस लेते समय मैंने कभी हार जीत के आधार पर फीस की दरें तय की हो। मुवक्किल हारे या जीते, मैं तो हमेशा अपना मेहताना ही मांगता था और जीतने पर भी उसी की आशा रखता था। मुवक्किल को मैं शुरू से ही यह कह देता था, मामला झूठा हो तो मेरे पास मत आना। साक्षी को सिखाने पढ़ाने का काम कराने की मुझसे कोई आशा न रखना। आखिर मेरी साख तो यही काम हुई थी कि झूठे मुकदमे मेरे पास आते ही नहीं। मेरे कुछ ऐसे मुवक्किल भी थे जो अपने सच्चे मामले तो मेरे पास लाते थे और जिनमें थोड़ी भी खोट खराबी पास ले जाते थे। एक अवसर ऐसा भी आया जब मेरी बहुत बड़ी परीक्षा हुई। मेरे अच्छे से अच्छे मुवक्किलों में से एक का यह मामला था, उसमें बही खातों की भारी उलझने भी। मुकदमा बहुत लंबा समय तक चला था, उसके कुछ हिस्से कई अदालतों में गए थे। अंत में अदालत द्वारा नियुक्त हिसाब जानने वाले पंच को उसका हिसाबी हिस्सा सौंपा गया था। पंच के फैसले में मेरे मुवक्किल की पूरी जीत थी, किंतु उसके हिसाब में एक छोटी परंतु गंभीर भूल रह गया था। जमा खर्च की रकम पंच के दृष्टि दोष से इधर की उधर ले ली गई थी। प्रतिपक्षी ने पंच के इस फैसले को रद्द करने की अपील की थी। मुवक्किल की ओर से मैं छोटा वकील था। बड़े वकील ने पंच की भूल देखी थी, पर उनकी राय थी कि पंच की भूल कबूल करना मुवक्किल के लिए बंधन रूप नहीं है। उनका यह स्पष्ट मत था कि ऐसी किसी बात को स्वीकार करने के लिए कोई वकील बंधा हुआ नहीं है जो उसके मुवक्किल के हित के विरुद्ध जाए। मैंने कहा, इस मुकदमे में रही हुई भूल स्वीकार की ही जानी चाहिए। बड़े वकील ने कहा, ऐसा होने पर इस बात का पूरा डर है कि अदालत सारे फैसले को ही रद्द कर दे और कोई होशियार वकील मुवक्किल को ऐसे जोखिम में नहीं डालेगा। मैं तो यह जोखिम उठाने को कभी तैयार न होऊंगा। मुकदमा फिर से चलाना पड़े तो मुवक्किल को कितने खर्च में उतारना होगा और कौन कह सकता है कि अंतिम परिणाम क्या होगा। इस बातचीत के समय मुवक्किल उपस्थित थे। मैंने कहा, मेरा तो ख्याल है कि मुवक्किल को और हम दोनों को ऐसी जोखिमें उठानी ही चाहिए। हमारे स्वीकार न करने पर भी अदालत भूल भरे फैसले को भूल मालूम हो जाने पर बहाल रखेगी, इसका क्या भरोसा है। और भूल सुधारने की कोशिश में मुवक्किल को नुकसान उठाना पड़े तो क्या हर्ज होगा। बड़े वकील ने कहा, लेकिन हम भूल कबूल करें तब ना। मैंने जवाब दिया, हमारे भूल न स्वीकार करने पर भी अदालत उस भूल को नहीं पकड़ेगी अथवा विरोधी पक्ष उसका पता नहीं लगाएगा, इसका भी क्या भरोसा है। बड़े वकील ने दृढ़ता पूर्वक कहा, तो इस मुकदमे में आप बहस करेंगे। भूल कबूल करने की शर्त पर मैं उसमें हाजिर रहने को तैयार नहीं हूं।
मैंने नम्रता पूर्वक कहा, यदि आप न खड़े हों और मुवक्किल चाहे तो मैं खड़ा होने को तैयार हूं। यदि भूल कबूल न की जाए तो मैं मानता हूं कि मुकदमे में काम करना मेरे लिए असंभव होगा। इतना कहकर मैंने मुवक्किल की तरफ देखा। मुवक्किल थोड़े से परेशान हुए। मैं तो मुकदमों में शुरू से ही था। मुवक्किल का मुझ पर पूरा विश्वास था। वे मेरे स्वभाव से भी पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तो आप ही अदालत में पैरवी कीजिए, भूल कबूल कर लीजिए। भाग्य में हारना होगा तो हार जाएंगे, सच्चे का रखवाला राम तो है ही ना। मुझे खुशी हुई। मैंने दूसरे जवाब की आशा न रखी थी। बड़े वकील ने मुझे फिर चेताया। उन्हें मेरे हट के लिए मुझ पर तरस आया, लेकिन उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया। अपनी सलाह के औचित्य के विषय में मुझे लेश मात्र भी शंका न थी, पर मुकदमे की पूरी पैरवी करने की अपनी योग्यता के संबंध में काफी शंका थी। ऐसी जोखिम वाले मसले में बड़ी अदालत में मेरा बहस करना मुझे बहुत जोखिम भरा जान पड़ा। अतएव मन के कांपते कांपते मैं न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुआ। जो ही उक्त भूल की बात निकली कि एक न्यायाधीश बोल उठे, यह चालाकी नहीं कहलाएगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। जहां चालाकी की गंध तक नहीं थी, वहां चालाकी का शक होना मुझे असहाय प्रतीत हुआ। मैंने मन में सोचा, जहां पहले से ही जज का ख्याल बिगड़ा हुआ है, वहां इस मुश्किल मुकदमे को कैसे जीता जा सकता है। मैंने अपने गुस्से को दबाया और शांत भाव से जवाब दिया, मुझे आश्चर्य होता है कि आप पूरी बात सुनने के पहले ही चालाकी का आरोप लगाते हैं। जज बोले, मैं आरोप नहीं लगाता, केवल शंका प्रकट करता हूं। मैंने उत्तर दिया, आपकी शंका ही मुझे आरोप जैसी लगती है। मैं आपको वस्तु स्थिति समझा दूं और फिर शंका के लिए अवकाश हो तो आप अवश्य शंका करें। जज ने शांत होकर कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपको बीच में ही रोका, आप अपनी बात समझा कर कही। मेरे पास सफाई के लिए पूरा पूरा मसाला था। शुरू में ही शंका पैदा हुई और जज का ध्यान मैं अपनी दलील की तरफ खींच सका। इससे मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने विस्तार से सारी जानकारी दी। न्यायाधीश ने मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और वे समझ गए कि भूल असावधानी के कारण ही हुई है। अतः बहुत परिश्रम से तैयार किया हिसाब रद्द करना उन्हें उचित नहीं मालूम हुआ। प्रतिपक्षी के वकील को तो यह विश्वास ही था कि भूल स्वीकार कर लेने के बाद उनके लिए अधिक बहस करने की आवश्यकता न रहेगी, पर न्यायाधीश ऐसी अस्पष्ट और सुधर सकने वाली भूल को लेकर पंच फैसला रद्द करने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। प्रतिपक्षों के वकील ने बहुत माथापच्ची की, पर जिन न्यायाधीश के मन में शंका पैदा हुई थी वे ही मेरे हिमायती बन गए। वे बोले, मिस्टर गांधी की गलती कबूल न की होती तो आप क्या करते? जिस हिसाब विशेषज्ञ को हमने नियुक्त किया था, उससे अधिक होशियार अथवा ईमानदार विशेषज्ञ हम कहां से लाएं? हमें मानना चाहिए कि आप अपने मुकदमे को भलीभांति समझते हैं। हिसाब का हर कोई जानकार जिस तरह की भूल कर सकता है, वैसी भूल के अतिरिक्त दूसरी कोई भूल आप न बता सकें। तो कायदे की एक मामूली सी त्रुटि के लिए दोनों पक्षों को नए सिरे से खर्च में डालने के लिए अदालत तैयार नहीं हो सकती। और यदि आप यह कहें कि इसी अदालत को यह केस नए सिरे से सुनना चाहिए, तो यह असंभव न होगा। इस और ऐसी अनेक दलीलों से प्रतिपक्षी के वकील को शांत करके तथा फैसले में रही भूल को सुधार कर अथवा इतनी भूल सुधार कर पुनः फैसला भेजने का हुक्म पंच को देकर अदालत ने उस सुधरे हुए फैसले को बहाल रखा।

1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, तथापि दक्षिण अफ्रीका में वकालत के समय के उनके संस्मरण तो अनेक थे, पर ये कुछ संस्मरण सत्य में उनके विश्वास को जीवन में कार्यक्षेत्र में कायम रखने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति थी गौरव शिखर राय की और वाचन स्वर था अवनीश कुमार सिन्हा का।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन थी गौरव शिखर राय की और प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं।

आइए आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज अब से बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनवाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर के अध्यक्ष डॉ MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केन्द्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमरीका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
9: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the 25th Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Center in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Sandipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
8: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edapati Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
10: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on the governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
8: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
4: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
8: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumaradesanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discuss initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen

0: 120 Hezbollah members killed since the ceasefire began. In Gaza, Israeli strikes have continued, with Hamas condemning the attacks as a continuation of what it calls Israel's war of extermination. Meanwhile, the U.S. military has carried out strikes on Iranian military facilities after responding to attacks on Navy ships. Washington said that it does not want the conflict to grow but is ready to defend its forces. Earlier, U.S. claimed that Iran attacked three U.S. Navy ships in the Strait of Hormuz, but American forces intercepted the attacks and no ships were damaged. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at the Ekana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to a 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell Marsh scored a dazzling 111 off 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 off 31 for Bengaluru. Mitchell Marsh was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra.
1: Thank you, Abhishek. BJP preparing to assume office in Kolkata after its stunning victory in West Bengal finds prominent mention in most of the dailies. Governor dissolves West Bengal, Assembly leads the pioneer. Amit Shah to meet Bengal MLAs today on choice of new chief minister, says the Asian Age. Bengal's re-industrialization roadmaps being chalked out, informs the statesman. India urges Bangladesh to speed up verification of illegal migrants, reports Hindustan Times. In another story, Hindustan Times headlines, Governor keeps Vijay waiting as Tamil Nadu deadlock deepens. The Tribune in its editorial piece says, hung mandate led Tamil Nadu Assembly floor decide. The paper writes that Tamil Nadu's unfolding post-election uncertainty has once again brought the constitutional role of the governor under scrutiny. With Vijay's Tamaraga Vetri Karagam falling short of the halfway mark, the question before Raj Bhavan is politically explosive yet constitutionally settled. Who should be invited to form the government? The constitution does not automatically grant the single largest party the right to govern. The governor is expected to determine which formation is most likely to command the confidence of the assembly. And finally, Financial Express, citing Niti Aayog's National Education Report released yesterday, says that Indian school kids are weakest in mathematics, higher reasoning. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BJP Central Observer for West Bengal Amit Shah to meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam, Tho Lam, emphasizes India-Vietnam role in global supply chain and business forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases in airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ekana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 50% आरक्षित पदों पर पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन शुरू, झारखंड को मिलेगा 450 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का लाभ। संताल परगना समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत। झारखंड बिहार में आयकर विभाग ने 20,000 करोड़ रुपए का कर किया संग्रह, महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली करेगा लागू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और रांची में कल से आयोजित होगी 12वीं जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50 अतिरिक्त आरक्षित पदों पर केवल पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने तथा हर शैक्षणिक सत्र में आरक्षित पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया है। साथ ही रिक्तियों की पहचान, विज्ञापन जारी करने और नियुक्ति पत्र देने के लिए भी समय सीमा तय की गई है। झारखंड को बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के एक सर्किट का चार्जिंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब JUSNL लगभग 450 मेगावाट तक बिजली प्राप्त कर सकेगा। इस परियोजना से दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और लोड शेडिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में आयकर विभाग ने निर्धारित 18,500 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 20,000 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया है। इसमें झारखंड से 12,000 करोड़ और बिहार से 8,000 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। महेंद्र सिंह धोनी बिहार झारखंड के व्यक्तिगत करदाताओं में सबसे बड़े आयकरदाता बने हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने देवघर में विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और पुनासी परियोजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा किया जाए।
4: सभी विभागों को बहुत ही गहनता के साथ हम लोगों ने समीक्षा किया है और जो डायरेक्शन देना था उचित, जो जनहित के लिए, वो डायरेक्शन हम लोग दे दिए हैं और उसको टाइम टेबल वगैरह फिक्स किया है। इतना दिन के अंदर इसको पूरा कर लेना है, यही आज की मीटिंग की व्यवस्था।
2: रांची नगर निगम की महापौर रोशनी खलखो ने जनगणना 2027 के तहत मोबाइल फोन के माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की स्वगणना की। उन्होंने बताया कि जनगणना का पहला चरण 1 से 15 मई तक चलेगा, जिसमें नागरिक वेबसाइट सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर यूनिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले में रजिया नदी पर सौर्य ऊर्जा संचालित उद्धव सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने किया। इस योजना के तहत नदी का पानी लिफ्ट कर सैकड़ों एकड़ भूमि तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।
5: बस्ती वासियों का जो गांव मंडल का जो गांव है यादव का जो गांव है वो नदी से ऊपर है और यहाँ पर अगर आप लिफ्ट इरिगेशन दे देते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ये रजिया नदी पर सिंधवा की पंचायत है, हमारा गाँव है तायरी पंचायत में, हमने बहुत बड़ा लिफ्ट इरिगेशन दिया है, यहाँ के लोग अब नदी से पानी उठाएंगे और अपने खेतों तक पहुँचाएंगे।
2: रांची यातायात पुलिस ने शहर में बिना वैध दस्तावेज और क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर चलने वाले बस, ऑटो और टोटो वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। चलाए गए अभियान के दौरान कुल 111 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इनमें 3 बस, 103 ऑटो और 5 टोटो वाहन शामिल हैं। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और मालिकों से वैध कागजात रखने तथा निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाकर वाहन चलाने की अपील की है। झारखंड में अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को हाई स्पीड बाइक दी जा रही है। इस कड़ी में हजारीबाग पुलिस को 42 नई बाइक मिली है जिन्हें पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि ये बाइक संकीर्ण गलियों और मोहल्लों में तेज पेट्रोलिंग तथा अपराधियों का पीछा करने में मददगार साबित होगी।
6: झारखंड सरकार के द्वारा पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स दिए गए थे, 42 बाइक नए आए थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और पुराने बाइक्स का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं शहर के थानों को और जहां पे अर्बन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन बहुत घना है वहां के थानों को, ताकि वहां पर पेट्रोलिंग हम लोग बाइक से भी कर सके। स्पॉट्स को हम लोग कवर करें जहां अड्डेबाजी होती है, जहां परेशानी होती है, जहां आम नागरिक ज्यादा डेंसिटी में रहते हैं वहां पर बाइक्स की पेट्रोलिंग हम लोग करें।
2: रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जांच अभियान के दौरान 13 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। आरपीएफ के अनुसार सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब्त मादक पदार्थ को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया। मौसम। झारखंड में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से आज से 13 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात की आशंका को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची समेत कई जिलों में 9 और 10 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। ताइक्वांडो। रांची में कल से 12वीं रांची जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रांची जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर से करीब 600 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और रेफरी विभिन्न स्कूल, कॉलेजों और क्लबों की ओर से भाग लेंगे। प्रतियोगिता के पहले दिन सब जूनियर और जूनियर वर्ग, जबकि दूसरे दिन कैडेट और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। चयनित खिलाड़ी वर्ष भर जिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने बिहार में हुए 32 मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की खबरों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, पश्चिम बंगाल में आज होगी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तैराकी प्रतिभाओं को उपलब्ध कराई जाएगी अत्याधुनिक सुविधा। हिंदुस्तान ने लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के खिलाफ अभियान पर सेनाओं ने किया खुलासा, 100 आतंकी मारे गए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को झारखंड में निबंधन से मिलेगी छूट। और अंत में मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 50% आरक्षित पदों पर पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन शुरू, झारखंड को मिलेगा 450 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का लाभ। संथाल परगना समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत। झारखंड बिहार में आयकर विभाग ने 20,000 करोड़ रूपये का कर किया संग्रह, महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली करेगा लागू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और रांची में कल से आयोजित होगी 12वीं जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से अमृता के साथ सुन रहे हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं पे संपन्न होता है। कलाकार थे मनोहर महतो और साथी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों, कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म फना के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है शान और कैलाश खेर ने। शब्द रचना है प्रसन्न जोशी की और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और बबला मेहता के स्वर में। फिल्म का नाम है चांदनी, संगीत दिया है शिवहरी ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस रंजन आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म साजन से, जिसे गाया है SP बाला सुब्रमण्यम ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

दोस्तों आइए सुनते हैं आशा भोसले और सुरेश वाडकर के स्वर में ये प्यारा सा गीत फिल्म सत्या से। संगीत दिया है विशाल ने और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम रसरंजन यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग देसी में आलाप और धमार गायन। कलाकार हैं अभिराम पाठक, पखावज पर संगत कर रहे हैं राम बचन पाठक और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं संचाली नाग।

0: इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा अमन में शफकत और नफस की पागिजगी, शायर ए नशीक गुरुदेव टैगोर का अजमत को सलाम, मालगुड़ी का मुसतफिर, आर के नारायण की अफसाना निगारी, मंटो एक बागी अदीब की दास्तान, मकाला अच्छी हुक्मरानी आवाम के खिदमत की बुनियाद, मकाल निगार, मकबूज अगलम, कंपियर मोहम्मद अहिदायतुल्ला, फौजिया तजी, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की है। कार्यक्रम आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आकाशवाणी रांची है। सामेईन की खिदमत में पेश है हमारा उर्दू प्रोग्राम। सामेईन को फौजिया का प्यार भरा आदाब। सामेईन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हाजिर हैं हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्लाह, आदाब फौजिया।
0: आदाब,
1: और कैसे हैं?
0: मैं खैर हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैर से होंगे और हमारे सामेईन भी।
1: बिल्कुल, बिला ताखीर आप बताएं कि आज हमारे सामेईन के लिए आप किन किन मौजूआत पर बात करेंगी।
0: बिल्कुल हिदायतुल्लाह, हमारे पास आधे घंटे का वक्फा होता है जिसमें हमें बहुत सारी बातें अपने सामेईन के सामने रखनी पड़ती है, खास करके वो सब बातें जो इस मंथ में आने वाला होता है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे रेड क्रॉस डे पे जो 8 मई को हम लोग मनाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और फौजिया ये तो बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल हो जाता है। हम जो ब्लड डोनेट करते हैं के जरिया जो है ना, किसी की जिंदगी को हम बचाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे एक अजीम शायर हैं गुरुदेव टैगोर, जिनकी वफात का दिन है 9 मई को।
1: जी जी, ये शख्सियत जो है बहुत ही आला शख्सियत, ना जाने कितने इनके नज्म है जिसमें के देश प्रेम और हुब्बुल वतनी का एक खूबसूरत नमूना मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद हम बातें करेंगे मंटो, एक बागी अदीब थे, उनके बारे में कुछ तफसील से गुफ्तगू करेंगे।
1: बिल्कुल, ये सआदत हुसैन मंटो जो है ना, इन्होंने जो अफसाना लिखे थे, अक्सर उस जमाने में इनके अफसाने पर केस हो जाता था कि इतनी गंदी और इतनी फुहश अफसाना लिख रहे हैं।
0: एक बागी अफसाना निगार थे वो।
1: जी, और फौजिया एक और शख्सियत है आप शायद भूल रही है।
0: जी जी,
1: उनका भी नाम आप बताए।
0: बिल्कुल, आर के नारायण, जिन्होंने मालगुड़ी रेस तख्लीकात थी, ये बहुत ही खूबसूरत थी, उसे देखने में और उसे सुनने में बहुत मजा आता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है।
1: ये तो बहुत अच्छे एक अफसाना निगार ये भी थे।
0: हिदायतुल्लाह, बातें करते हैं इंसानी खिदमत का उसूल, यानी कि रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के बुनियादी उसूलों में इंसानियत सरे फहरिस्त है, जो हर फर्द की जान, सेहत और इज्जत का तहफ्फुज़ यकीनी बनाता है। कुदरती आफात, जंगें और वबाओं में रजाकारों की कोशिशें इंसानियत को बचाने का बेहतरीन सबूत है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमदर्दी ही बका की कलीद है।
1: बिल्कुल फौजिया, ये दिन मनाने का ख्याल सबसे पहले 1933 में जापान के शहर टोक्यो में मुनाकिदा 15वीं बैनुल अक्वामी रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया, जहां पहली जंग अजीम के बाद अमन और जख्मियों के तहफ्फुज़ पर जोर दिया गया। 1948 में लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इसे रस्मी तौर पर 8 मई को हेनरी डेंट की सालगिरह के तौर पर तस्लीम किया।
0: और सामेईन, ये दिन दुनिया भर में फंड रेडिंग और आगाही मेहमान के जरिए लाखों लोगों की मदद करता है, जो इंसानी बका को मजबूत बनाता है। हर साल 8 मई को मनाया जाने वाला ये दिन रजाकाराना तौर को फरोग देकर समाजी हम आहंगी को यकीनी बनाता है। और हिदायतुल्लाह, आप बताएं कि रेड क्रॉस के 7 बुनियादी उसूल हैं।
1: फौजिया, रेड क्रॉस के बुनियादी उसूल की अगर हम बात करें तो इंसानियत ह्यूमैनिटी पर मबनी है, जिसमें कि जान और सेहत और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ और दोस्ती को फ़रोग़ देना जो है इसका बुनियादी उसूल है। अच्छा, और एक और बड़ी बात क्या है, गैर जानिबदारी, यानी नस्ली, मजहबी या सियासी तफरीक के बग़ैर सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंदों को मदद करना, यानी कि जानिबदाराना तो इसमें है ही नहीं कि आप किस जगह के रहने वाले हैं या किस मजहब के हैं, आप जो भी हैं इंसान हैं और इंसानियत के नाते आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। उसी तरह से है कि किसी तनाज़ु या फरीक हिमायत न करना, किसी भी लड़ाई झगड़े में जो है नहीं पढ़ना। इसी तरह से फौजिया, आज़ादी, इंडिपेंडेंस यानी कि खुद मुख्तार रहते हुए हुकूमती पॉलिसियों से मुतासिर न होना।
0: और हिदायतुल्लाह, हम सब जानते हैं कि रेड क्रॉस डे मनाने का भी एक बहुत अच्छा ये दिन है। अपने सामने को ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हिदायतुल्लाह, कि खून अतिया करना बहुत नेक काम है और जिससे आपकी सेहत को भी बहुत अच्छा असर पड़ता है इससे।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, अगर हम खून अतिया कर रहे हैं तो उसके जरिया से हमारे जो सेल्स हैं वो नए सेल्स तैयार होते हैं और बहुत जल्द तैयार होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक तो ये आपके जिस्मानी फायदे आपके खुद के हैं और दूसरी ये कि किसी को नई जिंदगी अगर मिल जाए फौजिया, तो इस दिन को खास तौर हम जो मनाते हैं तो जितने भी वॉलेंटियर्स होते हैं, रजाकार होते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत जो جوش و خروش کے ساتھ نوجوان نسل جو ہماری ہے وہ اس میں آگے آ رہے ہیں اور وہ اس کے لیے ڈر نہیں رہے ہیں بلکہ بلڈ ڈونیٹ آسانی سے کر رہے ہیں.
1: بالکل بالکل. اگلا موضوع ہے فوزیہ ہمارا رویندر ناتھ ٹیگور.
0: بالکل بالکل. بنگالی زبان کے عظیم شاعر, فلسفی اور نوبل انعام یافتہ ادیب تھے جنہوں نے گیتانجلی کے ذریعے عالمی شہرت پائی. کولکتہ میں پیدا ہوئے, انہوں نے شاعری, ناول اور موسیقی میں گرا قدر خدمات انجام دیے اور شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی قائم کی. ان کی شاعری میں قدرت, حب الوطنی اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے اور وہ ہندوستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں.
1: بالکل فوزیہ, اگر ہم ان کی تعلیمی سفر کی بات کریں تو تعلیم و تربیت, ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی, پھر 1878 میں قانون کی تعلیم کے لیے انگلستان گئے لیکن بغیر ڈگری کے واپس آ گئے. ادبی آغاز سفر 17 برس کی عمر میں ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی شانتی نکیتن. 1901 میں بول پور میں شانتی نکیتن کے نام سے ایک منفرد تعلیمی آشرم کی بنیاد رکھی جو بعد میں وشو بھارتی یونیورسٹی بنا.
0: اور ہدایت اللہ, اگر شاعری اور ادبی خدمات کے بارے میں بات کریں تو انہیں اپنے شہر آفاق کتاب کی تانجلی کے انگریزی ترجمے پر نوبل انعام حاصل کیا.
1: بالکل.
0: یہ اعزاز پانے والے وہ پہلے غیر یورپی تھے. ان کی شاعری میں فطرت سے محبت, انسانیت, فلسفہ اور روحانیت مرکزی موضوعات ہوتے تھے اور سامعین, ہندوستان کا قومی ترانہ جن گن من انہی کی تخلیق ہے.
1: بالکل فوزیہ, دیگر تخلیقات کی اگر ہم بات کریں تو شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناول, افسانے, ڈرامے اور مضامین لکھے جن میں گورا اور گھر بابرے مشہور ہیں. ٹیگور کی شاعری اور ادب نے نہ صرف بنگلہ زبان بلکہ پوری دنیا کے ادب پر گہری اثر مرتب کیے ہیں.
0: اور سامعین, ٹیگور کے مشہور اشعار ہیں, جہاں ذہن خوف سے آزاد ہو اور سر اونچا ہو, جہاں علم مفت ہو, جہاں دنیا کو تنگ دیواروں سے چھوٹے ٹکڑوں میں نہیں بانٹا گیا ہو, میری موت کے بعد مجھے بھول جانا, میرے آنسوؤں کو یاد نہ کرنا, میں نے اپنی زندگی کے آخر میں پایا کہ جو کچھ میرا تھا وہ کبھی میرا نہیں تھا اور جو میرا نہیں تھا وہ سب کچھ میرا تھا.
1: بالکل فوزیہ, یہ تو بہت بڑی روحانی کلام ہے جو رویندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ عام طور سے ہم لوگ جو اپنا سمجھتے ہیں گھر, مکان, گاڑی, بلڈنگ, پیسہ, دولت, یعنی دنیا کے جو عیش و آرام جو اپنا سمجھتے ہیں, تو یہ تو میرا اصل اپنا ہے ہی نہیں, کیونکہ جب ہم کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے تو یہ کچھ لے کے ہم نہیں جاتے ہیں. اور جو میرا, جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اچھے کام جس سے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور ہم ایشور کی ایک ایک بات کو, اللہ کی ایک ایک بات کو ماننے والے ہو جائیں, تو اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. اصل میں یہی ہمارا مرنے کے بعد کام آنے والا ہے. اس کلام سے اسی بات کا اظہار ہوتا ہے.
0: بالکل بالکل بالکل. ان کی سوچ پوری روحانیت اس میں نظر آتی ہے کہ روحانیت ان کی سوچ میں تھی. ہدایت اللہ, باتیں اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو تھوڑا لیے چلتے ہیں اپنے سامعین کو نغمے کی طرف اور سنواتے ہیں یہ پیارا سا خوبصورت سا نغمہ. گاتا

इसी के साथ कार्यक्रम उर्दू कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय था अमन में शफकत और नफस की पागीजगी, शायर ए नशीक, गुरुदेव टैगोर की अजमत को सलाम, मालगुड़ी का मुसस्विर, आर के नारायण की अफसाना निगारी, मंटो एक बागी अदीब की दास्तान, मकाला अच्छी हुक्मरानी आवाम के खिदमत की बुनियाद, मकाल निगार महफूज आलम, कंपियर मोहम्मद हिदायतुल्ला और फौजिया तेजी, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की थी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम जोहार रांची के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: जोहर रांची कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कृति
1: और मैं हूं अमृता।
0: स्वीकार करें हमारा नमस्कार
1: जोहर।
0: दोस्तों जरा सोचिए, आप स्कूल के बाद क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या कुछ और? हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सपने पूरा करने का सबसे बड़ा राज क्या है? जुनून। जी हाँ, वही जुनून जो आपको अंदर से जलाता है और लक्ष्य तक पहुंचाने की मोटिवेशन देता है।
1: बिल्कुल सही कहा कृति आपने। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, सचिन तेंदुलकर आपका आइडियल है, आप हर दिन क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं, मैच देखते हैं, बल्लेबाजी के गुण सीखते हैं, चाहे कितनी भी धूप या बारिश हो, आपका खेलने का जुनून जो है आपको मैदान तक खींच ही लाता है। यही जुनून आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनने में मदद करेगा।
0: बिल्कुल, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, ये जुनून किसी भी फील्ड में हो सकता है। शायद आपको सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, तो आप हर रोज़ रियाज करते हैं, हर गाने को सीखने की कोशिश करते हैं। या शायद आपको साइंस में दिलचस्पी हो, तो आप हर नए इन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं। यही जुनून आपको सफल साइंटिस्ट बना सकता है।
1: हाँ, जुनून जगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें और उन्हें करने में आपको कैसा लगता है इसे महसूस करें। अपने सपनों को हासिल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी सोचें, शायद वही आपका जुनून बन सकता है। हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कोई चीज़ें करने में आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जुनून सिर्फ उसी चीज़ से पैदा होगा जिसे करने में आपको सच्ची खुशी मिलती है।
0: हाँ, और दोस्तों याद रखिए, जुनून वो रास्ता है जो आपको सफलता और खुशी की तरफ ले जाता है। अपने जुनून को जगाएं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की और पहला कदम बढ़ाएं। जुनून वो आग है जो आपको जलाए रखती है। लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, जुनून आपको हार नहीं मानने देगा।
1: हाँ, और आप अपने रास्ते पर यूं ही चलते रहें, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी।

0: अब इतिहास में आगे बढ़ते हैं और हमारे श्रोताओं को बता देते हैं कि आज के दिन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: 1945 में आज ही के दिन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष जर्मनी का आत्मसमर्पण हुआ था।
1: और आज ही के दिन सन 1999 में बेलग्रेड स्थित चीनी दूतावास पर नाटो द्वारा प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया गया था।
0: आज ही के दिन 2000 में भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए।
1: और आज ही के दिन सन 2001 में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड से भी बाहर हुआ। और 2004 में आज ही के दिन श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया था।

0: कृति, अब बातें करते हैं कि आज जो है इतिहास में किन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज ही के दिन 1929 में भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था, और 1916 में भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतन तथा वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का जन्म हुआ था।
0: और आज ही के दिन सन 1895 में गोप बंधु चौधरी, जो कि उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा गांधीवादी कार्यकर्ता थे, उनका भी जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1926 में जो तपन राय चौधरी, प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका भी जन्म हुआ था। जीन हेनरी डेनिडेट, जो कि मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1828 ईस्वी में हुआ था।

0: कृति हम बातें कर रहे हैं इतिहास के बारे में, तो अपने श्रोताओं को ये भी बता दे कि आज जो है किन किन महान हस्तियों का निधन हुआ था। तो 1982 में आत्माराम रावजी देशपांडे, जो कि प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार थे, उनका निधन हुआ था। और 2013 में जियाफरुद्दीन डागर, जो कि भारत के मशहूर ध्रुपद गायक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था। और 1993 में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, जो कि भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका भी जो निधन आज ही के दिन हुआ था।
1: और आज ही के दिन 1899 में भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चापेकर बंधुओं में से एक वासुदेव चापेकर का निधन हुआ था। और 1927 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, दामोदर संजीवय का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 1915 में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक भाई बाल मुकुंद का भी निधन आज ही के दिन हुआ।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। तो कृति, अपने श्रोताओं को मौसम के बारे में बता दिया जाए।
4: हाँ, तो चलिए अमृता, आप थोड़ा मौसम का मिजाज भी जान लेते हैं, जो देखा जाए तो लगभग हर दिन बदल ही रहा है।
3: बिल्कुल, आधे समय आप देखेंगे तो धूप खिली रहेगी, और हाँ, आधे समय देखेंगे तो फिर वो घनघोर
4: बारिश होती है, फिर ओला भी गिरते हैं,
3: आंधी आती है।
4: बिल्कुल, तो झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। रांची समेत राज्य में शनिवार को तूफानी हवा के साथ बारिश होने का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य में पिछले 24 घंटे में कई जगह पर बारिश हुई है।
3: हाँ बिल्कुल, और वहीं आपको बता दें कि अधिकांश जिलों का तापमान अभी भी सामान्य से 5 डिग्री नीचे चल रहा है। रांची का अधिकतम पारा जो है 32.6 व न्यूनतम 19.7 डिग्री रहा है। अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे व न्यूनतम पारा जो है 4 डिग्री नीचे है। राज्य में जो है मौसम का हाल तो ऐसे भी खराब ही चल रहा है कृति। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक एक टर्फ लाइन बनी है, और उड़ीसा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है, जिससे बारिश होने का पूर्वानुमान है।
4: और राज्य में अगले 4 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 9 मई को रांची समेत राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश व वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।

0: तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अमृता चलिए अब हम हमारे श्रोताओं को कुछ काम की खबरें बता देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, अपने श्रोताओं को काम की खबर जरूर बताते हैं। सबसे जरूरी खबर ये है कृति कि SBI के ग्राहक अब ATM या डेबिट कार्ड गुम होने पर फोन कॉल के जरिए उसे ब्लॉक करा सकेंगे। SBI ने टोल फ्री नंबर 1800-1234 और 1800-2100 जारी किया है। फोन कर ग्राहक मांगी गई जानकारी देकर ATM ब्लॉक करा सकेंगे। तो ये बहुत ही काम की खबर है क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी का ATM जो है वो गुम हो जाता है और ATM गुम होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैंक जाने से बैंक का भी जो है समस्या जो है पहुंच जाता है।
0: और आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो अब भी आप अब शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1930 या मोबाइल नंबर 9771432133 जारी किया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग के ईमेल आईडी cyber@jhpolice.gov.in पर भी शिकायत की जा सकती है।
1: हाँ, और साथ ही आपको श्रोताओं ये भी बता दें कि ई-पे टैक्स सेवा के तहत अब करदाता जो है RTGS और NEFT के जरिए पेमेंट गेटवे मोड से भी कर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। पहले करदाताओं के लिए यह विकल्प मौजूद नहीं था, अब इस विकल्प के आ जाने के बाद उन्हें कर के भुगतान में आसानी होगी।
0: और किसी भी व्यक्ति के परिवार में हुए जन्म मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना होने के 30 दिनों तक निःशुल्क करवाया जा सकता है। अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के मुताबिक परिवार में हुए प्रत्येक जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन करवाना कानूनन आवश्यक है। तो ये थी काम की खबरें।
1: हाँ बिल्कुल, और आप सभी श्रोताओं जो हैं इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें और आपके साथ कभी भी जैसे आपका ATM गुम होता है, आप साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं तो आप इन सब चीज़ों को जरूर आजमाएं।
0: ये हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।

0: कृति, आज हम अपने श्रोताओं को कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं?
1: तो आज हम हमारे श्रोताओं को मनाली घुमाने ले जा रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है।
0: हाँ बिल्कुल, मनाली जो है कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है। समुद्र तल से लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है।
1: गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल, आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का अलावा जो है मनाली में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, काइकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और यहाँ के जंगली फूलों और सेब के बगीचों से छन कर आती सुगंधित हवाएं दिलो दिमाग को ताजगी से भर देती है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे, जो मनाली में आकर उन्होंने मनुष्य की पुनर्रचना की।
0: हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि आप मनाली में जो है कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आप जा सकते हैं हिडिंबा मंदिर, यह समुद्र तल से लगभग 1533 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे घुंघरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
1: और आप मणिकर्ण भी जा सकते हैं, यह समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गर्म पानी का झरना है ये, और कहा जाता है कि पार्वती माँ के कर्ण फूल यहाँ खो गए थे, उसके बाद से इस झरने का जल गर्म हो गया है।
0: हाँ, मनाली में बहुत सी रोमांचक जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। ये जगह वेकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप सभी जाएं और घूमें और आनंद उठाएं।

0: जोहारात्रि कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे सोहराई कला के बारे में। यह एक आदिवासी कला है। इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में आज से कई वर्ष पूर्व शुरू हुआ था।
1: हाँ, इस क्षेत्र के जो इसको पहाड़ियों की गुफाओं में आज भी इस कला के नमूने देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि बादम राजाओं ने इस कला को काफ़ी प्रोत्साहित किया था, जिसकी वजह से यह कला जो है गुफाओं की दीवारों से निकलकर घड़ों की दीवारों में अपना स्थान बना पाने में सफल हुआ है।
0: झारखंडी संस्कृति में सोहराई कला का महत्व सदियों से रहा है। बदलते परिवेश में कथित आधुनिकता के नाम पर लोगों का दुर्भाग्यवश इस कला के प्रति उपेक्षा भाव इसके अस्तित्व पर संकट बनकर आ खड़ा हुआ है।
1: हाँ, राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सोहराई पर्व के दौरान देसज दुधी माटी से सजे घरों की जो दीवारों पर महिलाओं के हाथों से हुनर अब बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। अब दुधी मही के जगह चूने ने ले ली है।
0: उस समय ऐसा कोई घर नहीं था जहां की महिलाओं इस कला से अपने घरों दीवारों को सजाना नहीं जानती हो। आज स्थिति बदल चुकी है। अब तो इसके कलाकार और इससे जानने वाले लोगों की संख्या भी गिनती में रह गई है।

0: कृति, मौसम का हाल तो हम सभी देख रहे हैं कि बदलते मौसम में जो है लोगों की तबीयत खराब हो रही है।
1: हाँ,
0: कभी ठंड हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: तो ये ठंड और गर्मी की वजह से बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों के एहतियात बढ़ने की
1: आवश्यकता है। और बदलते मौसम, गर्मी से बरसात, या फिर कहें तो मिश्रित मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमण, बुखार, गले में खराश और पेट से जुड़ी समस्याएं तो आम है। तो इन समस्याओं से कैसे आप बचें, उसके लिए हम हमारे श्रोताओं को कुछ प्रमुख स्वास्थ्य टिप्स दे देते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को खान पान में सावधानियां बरतनी होगी। बाहर का तला भुना या खुला खाना खाने से बचें। घर का बना हल्का और ताज़ा खाना खाएं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर का सेवन करें, जो कि विटामिन सी बढ़ाता है। हमेशा पानी उबालकर या फिल्टर करके पिए। पेट के इन्फेक्शन से बचने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अदरक और तुलसी चाय वाली चाय या फिर काढ़ा पिए।
0: हाँ, और खान पान के साथ जो है अपनी हाइजीन पर भी ख्याल रखें। हाथ धोएं साबुन से, नियमित रूप से जो है अपने हाथ को धोएं, विशेषकर बाहर से आने के बाद। नमी के कारण बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए कपड़े और जूते जो है पूरी तरह से सुखा कर पहने। बारिश में भीगने पर तुरंत नहाए और गर्म कपड़े या सूखे कपड़े पहने।
1: और आपको मच्छरों से भी बचाव जरूरी है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए सोते समय यह बहुत ज़रूरी है। और कूलर, टैंक या फिर घर के आसपास पानी को ना होने दें।
0: हाँ, बिल्कुल। और साथ ही जो है श्रोताओं, आप पर्याप्त नींद लें। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी आवश्यक है। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करें। हल्का गर्म पानी पीने से गले की खराश और पेट की समस्याओं से राहत मिलेगी।
1: हाँ, और अगर आपको कभी तेज बुखार हो या फिर जोड़ों में दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण महसूस हो, तो आप डॉक्टर के पास भी तुरंत जाएं।

0: तो कृति, बातें तो हमारी बहुत सारी थी और बातों का जो सिलसिला है अभी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो समय है वो समाप्त हो रहा है। तो हम अपने सभी श्रोताओं को कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और इसी के साथ हमें यानी मुझे अमृता को
1: और कृति को दें इजाजत। नमस्कार,
0: जोहार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, जिसे भेजा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से है भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणि कपूरी, लक्षनपुर से है विश्वनाथ साहू और पिपिरिया से है दुर्गा राम साहू। इन लोगों ने फरमाइश की है अकेले हम अकेले तुम फिल्म के गाने की। इस गाने को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, शब्द बद किया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अगली फरमाइश आई है गुलाम फिल्म के गाने की। इस गाने के फरमाइश भेजी है पटियाला से और इसे भेजा है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, निहारिका और वंश बत्ता ने। इस गाने को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आप सुन रहे हैं फरमाइशी गानों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश आई है गांधी चौक रॉपर्स से, और इसे भेजा है हरदेव मीका, बलबिंदर बीरक, जेतेक बीरक और मीका बीरक ने। इन लोगों ने फरमाइश की है राजा हिंदुस्तानी फिल्म के गाने की। इस गाने को गाया है उदित नारायण ने, शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आपकी पसंद कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश है गोला बाजार बक्सर से, जिसे भेजा है श्रद्धानंद आर्या, अभिनंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और इनके साथ है मोहित। इन लोगों ने फरमाइश की है आओ प्यार करें फिल्म के इस गाने की। इस गाने को गाया है कुमार सानू ने, शब्दबद्ध किया है सामराज ने और संगीत दिया है अधेश श्रीवास्तव ने।

इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज मेरे साथ है मेरी सखी राखी।
1: नमस्कार बहनों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगी, साथ ही अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रख रही होंगी।
0: हाँ राखी, आजकल तो बच्चों के स्कूल जाने का वक्त भी काफ़ी जल्दी हो जाता है ना, मौसम में काफ़ी बदलाव भी होता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी बहनों की चुनौतियाँ जो हैं थोड़ी बहुत तो बढ़ी गई होंगी, क्यों?
1: हाँ हाँ निधि, जब चुनौतियाँ आती हैं तो हम थोड़ा अधिक सावधान और सजग भी तो हो जाते हैं ना। सावधानी से ही संबंधित बातें आज बतानी है बहनों आपको, इसलिए शायद निधि ने सावधानी की बात शुरू की।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे हमें जीवन के हर एक पहलू में सावधान रहने की ज़रूरत है और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, है ना? तो बहनों, आज हम बातें करेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिवर्ष मई में मनाया जाता है।
1: हाँ बहनों, इस अभियान का यह उद्देश्य है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को जो है वो घटाकर आधा कर दिया जाए।
0: बिल्कुल, और जो चोट चपेट में जो आ जाते हैं लोग, तो उसमें भी कमी आए, यही हमारा उद्देश्य है। तो बहनों, सड़क सुरक्षा मानव जीवन की रक्षा करता है। इसका अर्थ है यातायात के नियमों का पालन करके मानव जीवन को सुरक्षित रखना। लापरवाही से की गई ड्राइविंग, जैसे मोबाइल का उपयोग, शराब पीकर गाड़ी चलाना या तेज गति गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं।
1: हाँ हाँ, तो आइए जानते हैं सड़क सुरक्षा के कुछ नियम बहनों, और उसका महत्व भी आपको बताते चले, है ना?
0: हाँ बताओ राखी, हमारी बहनों को
1: सुरक्षा जो साधन है उसमें क्या होता है कि दोपहिया वाहनों पर हमेशा ISI मार्क वाला हेलमेट आपको जरूर पहनना चाहिए। यह जो है वो जोखिम को कम करता है। और ये भी हम आपको बताते चलें कि सीट बेल्ट का उपयोग भी आप हमेशा करें, ये सब कुछ आपकी ही सुरक्षा के लिए है।
0: बिल्कुल, इसमें लापरवाही ना करें। और तेज़ गति हादसों का मुख्य कारण है। 1% गति बढ़ाने से घातक दुर्घटना का जो जोखिम है वो 4% तक बढ़ जाता है। तो तेज़ गति से बचने की ज़रूरत है। खास करके राखी देखोगी कि युवा वर्ग के जो लोग हैं उन्हें शौक होता है बहुत तेज़ गति में गाड़ी चलाने का।
1: बिल्कुल,
0: तो घर के लोगों को ये बताने की ज़रूरत है और इस पर कड़ी नज़र भी रखें। शराब पीकर वाहन चलाना तो हम जानते ही हैं कि गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है और ये जानलेवा भी है।
1: बिल्कुल, और जैसा कि अभी तुमने बताया मैंने दे कि मोबाइल का उपयोग करते हुए लोग गाड़ी चलाते हैं, ये भी गलत है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि पैदल यात्री जो हैं वो सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग भी करें, और बच्चों को भी सड़कों से दूर रखें या फिर अपने साथ उंगली पकड़कर उन्हें सड़क पार करवाएं बहनों।
0: हाँ, बिल्कुल, तो अगर हम सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे तो हम हादसों को बहुत कम कर सकते हैं,
1: क्योंकि जीवन एकदम अनमोल है बहनों, इस बात का ध्यान रखें। और जीवन बहुत प्रेमपूर्ण है, बहुत प्यार भरा है, और जीवन
0: की रक्षा हमें ही करनी है, पल पल करनी है। तो पल पल हम रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम सावधान भी रहें। तो बहनों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है। और बहनों, हमें पता है कि आप अपने ज़िंदगी को बड़े प्यार से जी रही हैं, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर से आपका अपने कार्यक्रम में। हम दो सखियां आपके साथ हैं, राखी और निधि।
1: और बहनों, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो लीजिए, प्रस्तुत है भेंट वार्ता। आकाशवाणी की 90 वर्षों की सुरीली यात्रा, ये विषय है आज का। हमारे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, और इनसे बातें कर रही हैं राखी शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
2: बहनों, आकाशवाणी 8 जून को अपने 90 वर्ष पूरे कर रही है। इस सुरीली यात्रा के गौरवपूर्ण अनुभव से हमारे श्रोतागण अभिभूत हैं। तो आइए, आज अपने कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं हम, और साझा करते हैं कुछ विशेष अनुभव। आज के हमारे अतिथि हैं हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, व्यंगकार, आलोचक और सेवा निवृत्त प्राध्यापक राखी विश्वविद्यालय, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: आपका अपने कार्यक्रम में नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: आकाशवाणी रांची से आपका गहरा जुड़ाव रहा है और आकाशवाणी से ही कहें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं।
1: 90 वर्षों को तो मैं कैसे समझता हूँ, लेकिन 70 वर्ष तो करीब इसको याद ही है। रांची के आकाशवाणी केंद्र से सबसे मैं जुड़ा, जब रेडियो में ऐसे स्टेशन भी खोल रहे थे, यहाँ से आवाज आती थी, हेलो टेस्टिंग माइक टेस्टिंग आकाशवाणी रांची, तब से मेरा जुड़ाव रहा है आकाशवाणी रांची के साथ। इससे इस केंद्र को मैंने विकसित होते हुए देखा है, यहाँ के केंद्र निदेशकों को देखा है। एक मेहरोत्रा साहब पहले आए थे दिल्ली से, फिर करतार सिंह दुग्गल जैसे व्यक्ति आए थे, उन्होंने आकाशवाणी के सौजन्य से अखिल भारतीय उर्दू मुशायरा करवाया था। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, आकाशवाणी रांची का।
0: जी आकाशवाणी ने समय समय पर, या हम यूँ कहें कि समय के साथ साथ, क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं?
1: एक बदलाव जो मुझको याद आता है, शुरू में लाइव प्रसारण होता था, जीवंत प्रसारण, रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। अब मान लीजिए आधे घंटे अचंक है, एक कहानी पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है, एक कविता सुनाने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है, एक व्यंग आलेख सुनाने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है, अब तीनों व्यक्तियों को मौन साथे रहना होगा जब तक कि पूरे चंद का प्रसारण समाप्त न हो जाए। आज रिकॉर्डिंग की सुविधा है, आप सुनिए, वो रिकॉर्डेड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुविधा तो मिली ही है, शुरू में थोड़ी कठिनाई होती थी। मुझको याद है आधे घंटे का चंक था, हम लोगों को कहा गया था कि आपको निवृत्त होना है, निवृत्त हो लीजिए, खांस लीजिए, थूक लीजिए, आधे घंटे तक फिर कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। तो वो कहानी पढ़ रहा है, इसको कविता सुनानी है, लेकिन चुप मौन साधे रहना है। तो रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ तो बड़ा आराम हो गया, एक अंतर तो ही दिखता है।
0: जी
1: हाँ,
0: आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय संगीत और साहित्य के प्रसार में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है?
1: बात बहुत अविस्मरणीय है। बड़े से बड़े साहित्यकार, सारे नाम इसको याद नहीं आ रहे हैं, आकाशवाणी ने हम लोगों के कानों में को उनकी ध्वनि से तृप्त कराया। अब सारे नाम पूरे दिमाग में आ नहीं रहे हैं, लेकिन देश के मूर्धन्य साहित्यकार, उनकी ध्वनियां हमारे कानों में पड़ी हैं आकाशवाणी के माध्यम से, बहुत बड़ी बात है। संगीत के क्षेत्र में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है, देश की विरल विभूतियों को। जैसे मुझको याद है, बहुत पहले की बात है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, उनका भाषण मैंने आकाशवाणी पर सुना है। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है आकाशवाणी का इस क्षेत्र में। और फिर बाद में जो जीवंत प्रसारण हुए, जैसे आकाशवाणी केंद्र रांची में करतार सिंह दुग्गल साहब जब आए थे, तो उन्होंने अखिल भारतीय उर्दू मुशायरा करवाया आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष। अब सोचिए, उसमें सदारत कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे सिराज गोरखपुरी, अल्पायु हुए एक कवि सलाम मशीर शहरी साहब, वो आए हुए थे, मजाज साहब आए हुए थे। क्या कहूँ मैंने, आप समझिए कि कितना प्रभावी था उनका पाठ। सलाम मछली शहरी ने जो कुछ सुनाया था, सन 1960 में मैंने सुना था, और आज भी वो पंक्तियां मेरी स्मृति में अमर है, दूसरी आकाशवाणी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। कहाँ अब ये आवाजें सुनने को हमको, अब तो ये है भी नहीं, ये लोग तो इतिहास हो गए, लेकिन इस इतिहास को जुगा लिया है आर्काइव में, वो आवाजें सुरक्षित होंगी आकाशवाणी के, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं नाम मुझे सीताराम मछली शहरी की पंक्तियाँ आज भी मेरे जहन में गूंजती हैं, जो उनके मुख से हमने सुनी थी। यही तो है,
0: बड़ा सुखद अनुभव रहा।
1: तो इसमें क्या संदेश
0: जी,
1: क्या संदेश?
0: आप आकाशवाणी रांची से जुड़े हैं काफी समय से, तो क्या कोई ऐसा यादगार या विशेष अनुभव रहा है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे?
1: बहुत सारे अनुभव। शुरू में जब बिल्कुल मैं युवा था तो एक रोमांच होता था, मुझे याद है मेरे एक मित्र थे स्वर्गीय हो गए श्रवण कुमार गोस्वामी
0: जी,
1: और उस जमाने में बड़े साहित्यकारों को प्रोड्यूसर बनाकर आकाशवाणी से जोड़ा गया था। ये योजना सुविचरानंद पंत की है जी, तो रांची में लाल बाबू यानी राधा कृष्ण प्रोड्यूसर बनकर आकाशवाणी से जुड़े थे। तो स्वामी जी की कहानी प्रसारित हुई, इसको लगा कि ये तो अमर हो गए मेरी कहानी। तो मैंने राधा कृष्ण जी ने कहा कि आपकी ये रचना मेरे पास है, शायद मुझको अच्छी लगी है, इसका वाचन कीजिए। वही रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, लाइव वाचन होता था, रोमांच ही दूसरा था कि आकाशवाणी से मेरी आवाज जा रही है और लोग सुन रहे हैं, वो दौर था
0: जी। आकाशवाणी के कुछ कार्यक्रम अभी भी ऐसे हैं जिन्हें लोग याद करते हैं, तो कुछ पुराने लोकप्रिय कार्यक्रमों के बारे में हमें बताए।
1: एक तो है सर्वभाषा कवि सम्मेलन
0: जी,
1: पहले तो नागपुर में सर्वभाषा कवि सम्मेलन में शामिल होने का मुझको सुख मिला था, बाद में एक दो साल पहले रांची में भी सर्वभाषा कवि सम्मेलन हुआ। इतना आनंदकर वो था, देश भर की भाषाएं एक मंच पर, हिंदी और उर्दू के अलावा शेष कविताएं पढ़ी जाती थी मूल कवि के द्वारा, और फिर एक अनुवादक कवि होता था जो उनका अनुवाद सुनाता था
0: जी।
1: और कुछ कविताओं के तो अनुवाद कर जैसे पंजाबी है, तो वो इतनी करीब है हिंदी के कि अनुवाद न भी हो तो वो समझ में आ जाए। अब नागपुर में जो मैंने पंजाबी की एक युवा कवित्री से जो सुना था तो आज भी मेरे जहन में तैरता है, जबकि रांची में भी ऐसा सर्वभाषा कवि सम्मेलन हो चुका है। अनुवाद की कई भाषाओं के अनुवाद की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है हिंदी उर्दू के अलावा शेष भाषाओं का अनुवाद भी प्रसारित करवाते हैं। एक मूल कवि होता है, एक अनुवादक कवि होता है
0: जी।
1: जैसे पंजाबी में नागपुर केंद्र से मैंने पंजाबी की एक युवा कवित्री को जो सुना था, वो पंक्तियाँ आज भी मेरी स्मृति में, आप ऐसे समझे कितना प्रभावी होता था यह कार्यक्रम। वो पंजाबी कवित्री ने कहा था, उसका हकीकत था नसीहत है
0: जी,
1: मेरी माँ ने बहुत सारी नसीहतें दी थी, कुड़िया यूँ कूद कूद कर नहीं चलती, दबे पाँव चलती, कुड़िया यूँ दीदा फाड़ फाड़ के नहीं देखती, नीची नजर देखती। इसी तरह से मैंने अपनी बेटी को भी नसीहतें दी, मैंने कहा कि तुझे बहुत सारी नसीहतें मिलेंगी, उन नसीहतों का ध्यान मत देना, तेरे मन में जो आए वो करना, सामने अगर दरवाजा बंद मिले तो तोड़ कर आगे निकल जाना।
0: क्या बात है,
1: तो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के में जो अंतर आ रहा है वो सुनने में अच्छा लगा, अच्छा लगता है। रांची में भी एक सर्वभाषा कवि सम्मेलन हो ही गया
0: जी। कई नए कलाकार हैं जिन्हें आकाशवाणी ने मंच प्रदान किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे नए कलाकारों को मंच प्रदान करने में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है?
1: कुछ तो नहीं चल पाते हैं, लेकिन अब आकाशवाणी कैसे निर्णय कर सकता है कि ये चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, लेकिन मुझको स्मरण है, मुझको वो नाम याद है कि उनको लेखक बनाने में आकाशवाणी की बड़ी भूमिका रही है। वो प्रारंभ में लिख रहे थे लेकिन उनका मनोबल बढ़ा जब आकाशवाणी से उनकी कहानियां प्रसारित हुई, उनकी कविताएं प्रसारित हुई, अच्छा लगता था। और कई नाम, अभी नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई नाम मुझको याद हैं आकाशवाणी के इसी प्रसारण के

0: अंत उनका मनोबल बढ़ा और वो हिंदी के अच्छे कहानीकार बन गए और वो हिंदी के कहानीकारों में शुमार और शामिल है। यही तो है, आकाशवाणी का बड़ा योगदान है, इसमें क्या संदेह
1: जी। मनोबल बढ़ा, यही बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ,
1: सबसे बड़ी बात है कि उन्हें मंच मिला, लोगों ने सुना और फिर वो आगे बढ़े। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही, तो अपने लक्ष्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को पूरा करने के प्रयास में आकाशवाणी को और क्या विशेष करने की आवश्यकता है?
0: ठीक है, ऐप के माध्यम से उसका प्रसार बढ़ा तो है, और ठीक है, कुछ नया तो मुझको सूझ नहीं रहा है कि जो और करे वो। नहीं, अच्छा लगता है जब गांव में देहातों में जब एक विनोदी प्रसंग याद आ रहा है
1: जी।
0: जब दूरदर्शन आया तो एक मेरे मित्र जो पहले आकाशवाणी में ही कार्यक्रम अभियासी थे, दूरदर्शन में चले गए। वो कहते थे कि अब क्या कीजिएगा, दूरदर्शन में क्योंकि चित्र सामने आता है तो किसी दर्शन में ही बैगन नीला दिख रहा है, कहा तो मजा आ रहा है, यहाँ तो जो कुछ होना है ध्वनि के माध्यम से ही होना है। लेकिन ये कला देखिए, जैसे एक बात मेरे जहन में आ रही है कि नई विधाएं भी

0: मैं भी विकसित हो जाती, ध्वनि रूपक की था आकाशवाणी के चलते ही विकसित हुई। वरना नाटक तो दृश्य माध्यम श्रव्य माध्यम है, केवल शब्द माध्यम से भी नाटक हो सकते हैं, यह आकाशवाणी ने हमको सिखाया। अब नाम याद नहीं आ रहा, आकाशवाणी से तो एक विशेष कार्यक्रम ही हुआ करता था नाटक का, रात में शायद व्यंग नाटक होते थे, हास्य नाटक होते थे, होते थे
1: जी। बचपन में हमने सुना था सर, कुछ दांत रे दांत ऐसा कोई व्यंग नाटक था आपका, प्रसारित होता था बाप के साथ, दांत रे दांत कुछ ऐसा था।
0: हाँ, वो मेरे जहन में आ गया था, सिमडेगा में उन दिनों रहता था
1: जी।
0: और एक आदमी, अब जनजातीय समुदाय के लोग सबके चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता बेचारे आदिवासी, तो एक बंगाली डॉक्टर थे, एक ही डॉक्टर थे उस समय
1: जी,
0: बहुत पहले की बात है, वो यद्यपि सरकारी अस्पताल था लेकिन वो स्थानीय लोगों से लेते थे आसानी। तो एक व्यक्ति आया दांत दिखाने
1: जी,
0: ना वो चिल्ला रहा था बाप रे बाप, दांत रे दांत, दर्द है दर्द। डॉक्टर साहब ने कहा मुंह खोलो, कहीं दांत को उखड़ाने होगा। तो भीतर सर्दी लाने के लिए चले गए, कंपाउंडर भी चला गया, सर्दी लेके आए, दांत उखड़ रहे हैं। तब तक दूसरा कोई आदिवासी, अरे बाप रे बाप, सगे देह में बच्चा मैं मर जाता हूँ। तो दांत वाला जो था वो कहा था वो पूरा देह में सगर देह में बच्चा है। तो दांत वाला हट गया और बुखार वाले कहा कि तो तकलीफ ज्यादा है भाई, तुम्हें तो पहले दिखा ले। तो बुखार वाला आके बैठ गया, दांत के डॉक्टर साहब आए, मुंह खोलो, और पहले वाले का दांत जहाँ था उसी दांत को पकड़ के उन्होंने उखाड़ दिया। बाप रे बाप, बाप रे बाप, जाओ जाओ ठीक हो जाएगा, खून बह रहा है, कोई बात नहीं है। तो तुम्हें कहा था ये दांत में दर्द है, बोला कि हम नहीं बाबू, मोर तो देह में बच्चा है। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे कंपाउंड साहब कहाँ चला गया हूँ, दांत बच्चा वाला तो भाग गया हूँ दूर इसका तकलीफ देख के। वही मैंने दांत मेरे दांत वाला एक जमाने में नाटक लिखा था।
1: बड़े चुटीले अनुभव रहे हैं।
0: हाँ, मैंने बात यहाँ से शुरू हुई थी, एक नई लिखा ध्वनि नाटक या ध्वनि रूपक का जन्म हुआ था। मुझको याद है साहित्य अकादमी की पत्रिका है ना, क्या नाम है, समकालीन भारतीय साहित्य
1: जी,
0: तो मैंने अपना एक ध्वनि रूपक यथावत समकालीन भारतीय साहित्य को भेज दिया था और यह लिखा था कि इस नाटक को मैं ध्वनि रूपक के रूप में ही इसलिए भेज रहा हूँ कि यदि आमतौर पर लोग ध्वनि रूपक को रंग रूपक के रूप में बदल देते हैं, यानी ध्वनि संकेत जो है उनके लिए रंग संकेत दे दिए
1: जी,
0: और इस तरह से ध्वनि नाटक को रंग नाटक के रूप में लोग छपा लेते हैं, प्रकाशित कर लेते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि ध्वनि नाटक कैसे लिखे जाते हैं लोग जानेंगे कैसे, यदि सारे ध्वनि नाटकों को हम लोग रंग नाटक के रूप में बदल देंगे तो उस समय जो समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक थे उन्होंने मेरा लगभग आधे घंटे का एक ध्वनि नाटक यथावत प्रकाशित किया। समकालीन भारतीय साहित्य में मेरा ध्वनि नाटक यथावत छपा था
1: जी। तो बहुत सारे सुखद अनुभव ऐसे रहे जो आपने साझा किए हमारे श्रोताओं से। सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: क्या कहें, बिल्कुल याद आया, बताया, अच्छा लगा आपसे बातें करके, अपनी बातें लोगों से साझा करके, धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, आकाशवाणी की 90 वर्षों की सुरीली यात्रा। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी और इनसे बातें कर रही थी राखी शर्मा।
3: तो बहनों, ये हमारे लिए सचमुच में गौरव का क्षण है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो गए। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका प्रेम, ऐसे ही हमेशा हमें उत्साहित करता रहेगा। आप हमसे हमेशा

0: जुड़े रहें, हमारे कार्यक्रमों का आनंद लेते रहें।
1: तो राखी, अब वक्त हो चला है बहनों को अलविदा कहने का। और हाँ, बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। बहनों, अभी के लिए दें इजाजत अपनी सखियों निधि और
0: राखी को। नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल।
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
1: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है। और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
2: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
2: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
2: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र। यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@ciet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: तेरे।
1: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
2: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7

7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं। तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on the 11th of May to mark 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Rajendra Prasad, in 1951. The Prime Minister today wrote an article in a national daily paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath a symbol of India's civilizational strength and resilience. He said the temple's journey represents a movement from destruction to creation and shows how faith and culture can survive even after repeated attacks and hardships. The Prime Minister remembered the role of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, in rebuilding the temple after independence. Mr. Modi said Patel had strongly believed that the reconstruction of Somnath was a national duty. The West Bengal BJP Legislature Party will meet in Kolkata this afternoon to elect its leader. The party's central observer and Union Home Minister Amit Shah will be present in the meeting. The BJP registered a historic victory in the just-held assembly elections, ending the TMC's 15-year rule in the state. The swearing-in ceremony of West Bengal's first BJP government will be held at Brigade Parade Ground in Kolkata tomorrow. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement, the Defence Ministry said the modular range extension kit Tara is the country's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden flight trial. In a major boost to railway safety and modernization, Indian Railways has sanctioned expansion of the Indigenous Kavach Automatic Train Protection System across key routes of Northern Railway at a total cost of around 362 crore rupees. The sanctioned works include provision of Kavach over nearly 1,478 route kilometres, covering important sections of Firozpur and Jammu divisions. Kavach is India's indigenously developed automatic train protection system that helps prevent collisions by automatically applying brakes in case of unsafe movement. The technology also assists loco pilots in maintaining safe train operations through continuous communication between locomotives, signalling systems and trackside equipment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized on India's burgeoning role as a pillar of global economic stability and highlighted the nation's significant contribution to international prosperity. The minister made these remarks during an address to representatives from various sections of Surinamese society in Suriname.
1: India contributes to the 17% of the total global growth. We help to de-risk the international economy. We help to give more possibilities. We are creating more options. We are today negotiating and concluding more free trade agreements for countries to avail of it. And along with that, we are trying to create a global footprint so that our impact on the international economy and the de-risking of the world is as impactful, as far-reaching as possible.
0: The Enforcement Directorate has registered a case against Gamescraft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to suicide committed by the victims. Minister of State for External Affairs Keertivardhan Singh has said India's approach to migration is guided by the core operational principles of protection of migrants, comprehensive governance across the migration life cycle, and strong international cooperation. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन के पार। बफर स्टॉक से 3 गुना अधिक भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वयं सहायता समूहों के बीच 40 प्रसंस्करण इकाइयों का किया वितरण। 65 लाभुकों को 17 लाख रूपये से अधिक की सहायता राशि की प्रदान। देवघर में नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर। अब सिंगापुर, दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के लिए देवघर में मिलेगी वीजा सुविधा। मोरी स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और अब समाचार विस्तार से। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर प्रखंड परिसर में स्वयं सहायता समूहों और प्राथमिक सहकारी समितियों के बीच गेहूं प्रसंस्करण मशीन तथा मिनी राइस मिल का वितरण किया। कार्यक्रम के तहत कुल 40 प्रसंस्करण इकाइयां लाभुकों को सौंपी गईं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से प्रभावित 65 लाभुकों के बीच 17,24,000 रूपये की सहायता राशि भी वितरित की गई। झारखंड बिहार का पहला वीजा फैसिलिटी सेंटर अक्टूबर नवंबर में देवघर में शुरू होगा, जिसकी जानकारी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने दी। यह पूर्वी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल वीजा बनाने की सुविधा नहीं है। शुरुआत में यहां छोटे देशों के लिए वीजा बनेंगे और पर्यटन या पढ़ाई के लिए सिंगापुर, दुबई, मलेशिया और बैंकॉक जाने वालों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही देवघर एयरपोर्ट से हैदराबाद, गुवाहाटी व सूरत के लिए सीधी उड़ान और गोड्डा से गुजरात, राजस्थान के लिए सीधी रेल सेवा की भी तैयारी है, जिससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहेगा।
3: रांची विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की फीस वापस करेगा। कुलपति डॉ. सरोज शर्मा ने बताया कि सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने के कारण फीस वापसी की तैयारी की जा रही है।
5: हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि उन विद्यार्थियों की फी जो है, जो ली गई थी, उसको वापस कर दिया जाएगा। और इस पे हम अगले हफ्ते प्लान कर रहे हैं कि कुछ स्लॉट हम बनाएंगे और विषयवार विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और उनके पैसे जो सबमिट हुए थे उसको उनको लौटा दिया जाएगा।
3: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में सरायकेला में मां बेटी की मौत और रांची की घटनाओं पर चर्चा करते हुए संबंधित दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने अस्पतालों की नियमित निगरानी और रिक्त पदों को भरने पर जोर दिया। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन से जुड़े स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई याचिका के बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने झारखंड सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। याचिका में खनन के कारण स्थानीय लोगों में कैंसर, त्वचा और श्वसन रोग तथा भूजल और कृषि भूमि के प्रदूषण की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता संजीव कुमार अम्बष्ट ने मामले की स्वतंत्र जांच, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, मुफ्त इलाज और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मोरी स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल हटिया आदित्यपुर एक्सप्रेस, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, रांची खड़गपुर एक्सप्रेस, बोकारो स्टील सिटी रांची मेमू तथा हटिया सांकी मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू ट्रेन का आंशिक समापन और प्रारंभ गोमो स्टेशन से होगा। इन ट्रेनों का गोमो हटिया गोमो के बीच परिचालन 8 और 9 मई को रद्द रहेगा। विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान ने दिल्ली सहित साहित्य अकादमी सभागार में रांची की साहित्यकार वीना श्रीवास्तव को अनिता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिता 2026 में प्रथम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। उनकी कहानी अब आप सुनिए को देश भर से आई 175 प्रविष्टियों में से भाषा, संवेदना, शिल्प और सामाजिक सरोकारों के आधार पर चुना गया। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में महिला से चेन छिनतई मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों और एक ज्वेलरी दुकानदार को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपियों के पास से छीनी गई चेन से बनाई गई 3 सोने की अंगूठियां, स्कूटी और नकद राशि बरामद की गई है।
6: स्कूटी सवार व्यक्ति थे, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। घटनाओं पर रोकथाम के लिए एक दल का गठन किया गया, उनको पकड़ने का कार्य किया है। कबरी में हमको 2-3 चीजें प्राप्त हुई, जिसमें एक स्कूटी जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था, 15,000 रूपए कैश प्राप्त हुए हैं, 3 सोने की अंगूठी जो सोना पिघलाकर बनाई गई वो भी हमें बरामद।
3: जमशेदपुर में झारखंड क्षेत्रीय युवा संघ ने कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है। संघ के एक सदस्य ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर शंखनाद और माल्यार्पण के साथ होगी।
7: 487वां जन्म जयंती है, अदम्य साहस, शौर्य और देश के प्रति मर मिटने के जो जज्बा रहा है, वीर महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। मरीन ड्राइव बुलचक्कर पे 5 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद आरती करेंगे और आरती के बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा।
3: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,41,500 रुपए है, जबकि चांदी की कीमत 2,68,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में सड़क विवाद के दौरान मारपीट और लाइसेंस से राइफल छीनने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। रांची पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर छीनी गई राइफल और घटना में प्रयुक्त पिकअप वैन बरामद की है। क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इससे पहले कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन के पार, बफर स्टॉक से तीन गुना अधिक भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वयं सहायता समूहों के बीच 40 प्रसंस्करण इकाइयों का किया वितरण, 65 लाभुकों को 17 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की प्रदान। देवघर में नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर, अब सिंगापुर, दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के लिए देवघर में मिलेगी वीजा सुविधा। मुरी स्टेशन पर विकास कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्र संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार थी गिरिजा देवी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे गजल। पहला गजल है भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज़ में।

दोस्तों ये माना जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यारो चार दिन भी। तो आइए इस चार दिन की जिंदगी को खुशी से जी लें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपने सुना गजल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज़ और दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर एक अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में दिल्ली से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए

0: डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सत्तागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। ताकि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर

0: पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सामाजिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: कास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है जय भारती। कार्यक्रम को शुरू करते हैं फना फिल्म के इस गाने से। इस गाने को गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने, शब्दबद्ध किया है प्रशून जोशी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आप सुनिए उदित नारायण की आवाज में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अब आप सुनिए बॉर्डर टू सिर्फ ये गाना। इस गाने को गाया है सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने। इसे शब्दबद्ध किया है मनोज मुंताशिर शुक्ला ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

अब आप सुनिए चक दे इंडिया फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मैरियाना डी क्रूज ने। शब्दबद्ध किया है जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

0: इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम जय भारती। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पानी की बर्बादी रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया।
2: झारखंड झरनों का प्रदेश है, पेड़ों का प्रदेश है, खनिज का प्रदेश है, सभ्यता का प्रदेश है, संस्कृति का प्रदेश है। खेत का पानी खेत में रहे, मेड़बंदी करें, वाटर सेट छोटे छोटे जो नाले हैं उनको पानी को रोका जाए, वर्षा की बूंदे जहां गिरे वहीं रोकें, जल को धन मानकर रोकें, जल जीवन है, जल है तो कल है।
1: वहीं सीएम पीडीआई के महाप्रबंधक वीके पांडे ने खदानों में जल संचयन के सफल मॉडलों की जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक तालमेल और आपसी समझ को बढ़ाना है। इस पहल के जरिए युवा प्रतिभागी दूसरे राज्यों का दौरा कर वहां की शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और समृद्ध विरासत का गहन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब तक 6000 से अधिक युवा 130 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति नागरिकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस वर्ष मार्च तक राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 2,17,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लाभार्थियों की संख्या अब 8,96,00,000 से अधिक हो गई है। झारखंड के बहुचर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद 168 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। आज रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 20,000 रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत प्रदान कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में एक विशेष मैराथन का आयोजन किया गया। 3.5 किलोमीटर की इस दौड़ को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी की यात्रा और भविष्य के संकल्पों पर अपने विचार साझा किए।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: मैराथन में शामिल सभी प्रतिभागियों को पदक और विजेताओं को ट्रॉफियां प्रदान की गई। जमशेदपुर के कालीमाटी रोड पर कल देर रात भीषण आग लग गई। यहां बिक्री के लिए खड़ी 2 कारें अचानक लगी आग में जलकर पूरी तरह राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि उसे देखते ही देखते दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सरायकेला खरसावां जिला अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपराधी को कड़ी सजा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने राजनगर निवासी 24 वर्षीय राज हिमब्रम को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मैं हूँ कृति पौराणिक। प्रस्तुत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अंताक्षरी का खेल शुरू ही होता है म अक्षर के गाने से। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अंताक्षरी।

0: अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप अंताक्षरी।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम को शुरू करते हैं और अब आप सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अब आप सुनिए मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब आप सुनिए गर फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने, शब्दबद्ध किया है सबीर अहमद ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में अब आप सुनिए कालिया फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: अब आप सुनिए जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है किशोर कुमार ने, शब्दबद्ध किया है इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती है ना?
1: नहीं।
2: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

0: इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीमों के लिए एक विशेष एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त बनाना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पानी की बर्बादी रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया। धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के वासेपुर स्थित घर पर आज पुलिस ने बड़ी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बैंक मोड़ थाना और भूली ओपी पुलिस ने भारी सुरक्षा बल के साथ अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई पूरी की। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय से प्रोजेक्ट पहल की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। पाकुड़ के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कटे होंठ और तालू वाले बच्चों के लिए एक विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया गया। आरसीएच पदाधिकारी डॉ एस के झा ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 25 बच्चों की स्क्रीनिंग की। राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय सीनियर रैंकिंग नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए साहिबगंज के 4 पहलवानों का चयन हुआ है। इसमें महिला वर्ग में रूपाली कुमारी और रोशनी कुमारी, जबकि पुरुष वर्ग में गुंजन यादव और अंगद कुमार झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 होने को हैं।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी देते हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:30 पर श्रमिक लोक। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचारों का। छह बजकर 2 मिनट पर खेती बारी, जिसके पश्चात 6:32 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

7:15 पर आदिवासी अखड़ा, 7:45 का समय होगा, प्रायोजित कार्यक्रम सहिया का। रात्रि 8:00 फिल्मी नगमों का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 8:30 सुर्खियों में

8:45 से हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 बजे सुनहरी यादें, जिसके तहत आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमें। 10:30 बजे का समय होगा शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सितार पर राग चांदनी कल्याण, कलाकार हैं निशात खान। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म राजा के इस गीत के साथ। गायक है अलका याग्निक और उदित नारायण, संगीत नदीम श्रवण का है और बोल हैं समीर के।

0: रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म फना से। गायक हैं सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल। संगीत जतिन ललित का है और बोल हैं प्रसून जोशी के।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: अब जिस गीत को सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म जोधा अकबर से।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का सांझ सरगम कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में बिजली और पानी के संकट को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य को केंद्र से पेयजल सुधार के लिए मिले 12,700 करोड़ रूपये का बंदरबांट कर लिया गया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हिंसा करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने सत्र 2026-28 के लिए अपने प्रतिष्ठित एग्जीक्यूटिव एमबीए कार्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कोर्स विशेष रूप से कामकाजी पेशेवरों और उद्यमियों के लिए डिजाइन किया गया है। विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संदीप मंडल ने बताया कि 2 वर्षीय इस कार्यक्रम की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज साल 2017 की होमगार्ड बहाली में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्हें जल्द नियुक्ति नहीं मिली तो वे आत्मदाह जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। देवघर जिले के ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर एसबीआई आरसीटी में आगामी 11 मई से गाय पालन और वर्मी कंपोस्ट का 12 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 18 से 45 वर्ष के ग्रामीण युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता,
1: और मैं हूँ एडित।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो दोस्तों, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को याद करने और मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा करने वाले स्वयं सेवकों को सम्मानित करने का भी अवसर है।
0: ये दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
1: जी हाँ दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें याद दिलाता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करेंगे और समाज में प्रेम और सद्भावना फैलाएंगे।
0: और दोस्तों, रेड क्रॉस का मूल मंत्र है मुस्कान के साथ सेवा। हमें भी बिना किसी स्वार्थ के मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और दोस्तों, रेड क्रॉस एक विश्व प्रसिद्ध मानवीय संगठन है, जिसका उद्देश्य युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के समय पीड़ित लोगों की सहायता करना है। इसकी स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के समाज सेवी हेनरी ड्यूनेंट ने की थी, और 1859 में सोलफेरिनो के युद्ध में हजारों घायल सैनिकों की पीड़ा देखकर उन्होंने एक ऐसे संगठन की कल्पना की जो बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों की मदद करे, और इसी विचार से रेड क्रॉस आंदोलन की शुरुआत हुई।
1: जी हाँ दोस्तों, रेड क्रॉस का प्रतीक सफेद पृष्ठभूमि पर 5 बराबर वर्गों से बना एक लाल क्रॉस है, जो सेवा और मानवता का प्रतीक माना जाता है। समय के साथ यह संगठन विश्व भर में फैल गया और आज लगभग हर देश में इसकी शाखाएं काम करती है, और हमारे देश में इस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी।
0: और दोस्तों, अगर हम इसकी भूमिका की बात करें तो रेड क्रॉस युद्ध के घायल सैनिकों और नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा बाढ़, भूकंप, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाना, दवाइयाँ और आश्रय भी उपलब्ध कराता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही साथ यह संस्था रक्तदान शिविर आयोजित करती है, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देती है और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का कार्य भी करती है। और कोरोना महामारी जैसे कठिन समय में भी रेड क्रॉस ने लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: और दोस्तों, रेड क्रॉस मानवता, निष्पक्षता और सेवा जैसे सिद्धांतों पर कार्य करता है। यही कारण है कि ये संगठन आज पूरी दुनिया में सेवा और करुणा की प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, आइए हम लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में

0: यूपी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आइए हम आपको बताते हैं इतिहास में आज के दिन कुछ घटित जानकारियाँ।
4: 8 मई का दिन इतिहास में मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में जाना जाता है। 1945 में इसी दिन जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ था।
3: और दोस्तों, 1886 में कोका कोला का आविष्कार अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन एस पैम्बर्स्टन ने कोका कोला का विकास किया।
4: जी हाँ दोस्तों, 1929 में गिरिजा देवी का जन्म, जो कि भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी।
3: और 1999 में नाटो द्वारा बेलग्रेड स्थित चीनी दूतावास पर हमला किया गया था।
4: 2000 ईस्वी में भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराज पाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए।
3: और इसी के साथ 2004 में श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कुछ रोचक तथ्य जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और सुनकर हंसी भी आएगी। तो पहला रोचक तथ्य ये है कि हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता,
4: जंप नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, शुतुरमुर्ग की आंखें उसकी दिमाग से बड़ी होती है, इसकी एक लात शेर को भी मार सकती है। और तितलियां किसी भी चीज का स्वाद अपने पैरों से चखती है।
3: और दोस्तों, 1700 के दशक के अंत तक यूरोप में बहुत से लोग टमाटर खाने से डरते थे। उन्हें लगता था कि टमाटर जहरीली है, क्योंकि अमीर लोग जब पीतल की प्लेट इस्तेमाल करते थे तो टमाटर का एसिड उस पीतल के साथ मिलकर जहर बना देता था।
4: और 19वीं सदी में जब कैमरे नए आए थे, तब लोग फोटो खिंचवाते समय स्माइल करने के बजाय प्रून्स कहते थे, ताकि उनके होंठ छोटे और गंभीर दिखे, क्योंकि उस समय मुस्कुराना अच्छा नहीं माना जाता था। और आज के समय में लोग चीज बोलते हैं ताकि वे मुस्कुराते हुए दिखें।
3: और दोस्तों, बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन असल में अंधेरे से डरते थे, शायद इसी वजह से कि उन्होंने रोशनी करने का तरीका ढूंढ निकाला। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, आइए हम लेते एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आइए हम जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स। सिटी यूनियन बैंक ने आर विजय आनंद को मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। और साथ ही जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में अंतिम मील तक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर फिनटेक प्लेटफॉर्म इजी पे के साथ साझेदारी की घोषणा की है।
1: एनसीईआरटी ने स्कूलों में दिव्यांगता की शीघ्र पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 लॉन्च किया। यह एक आधुनिक उपकरण है जिसे स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की पहचान को शुरुआती चरण में करने के लिए डिज़ाइन किया है। आईआईटी मद्रास ने ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला संयुक्त राज्य केंद्र मेलोन पार्क कैलिफोर्निया में स्थापित किया।
0: शशि शेखर वेम्पति को

0: तो एडिथ, क्या आपने कभी रक्तदान किया है?
1: हाँ अंकिता, मैंने पिछले साल पहली बार ब्लड डोनेट किया था। शुरू में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाद में बहुत अच्छा महसूस हुआ।
0: अच्छा एडिथ, और इसका प्रोसेस कितने देर में पूरा हो गया था?
1: लगभग 15 से 20 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था।
0: और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ सकती है, क्या आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ था?
1: ये सिर्फ गलत फहमी है अंकिता, हेल्दी इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है। थोड़ा रेस्ट और पानी पीने से सब नॉर्मल रहता है। हमारा शरीर कुछ ही दिनों में ब्लड की कमी पूरी कर देता है, और कई लोग डर की वजह से भी रक्तदान नहीं करते हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि ब्लड डोनेट करने से सिर्फ मरीज को ही नहीं, दान करने वाले को भी फायदा होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और इससे स्वास्थ्य जांच हो जाती है और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ता है। और रक्तदान तो सिर्फ एक दान नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। एक यूनिट खून किसी दुर्घटना पीड़ित, ऑपरेशन वाले मरीज और भी बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति की जान बचा सकता है, क्यों एडिथ?
1: बिल्कुल, तो आज के समय में हॉस्पिटल में खून की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है। अगर हर स्वस्थ व्यक्ति साल में सिर्फ एक बार भी रक्तदान करे, तो शायद किसी को खून की कमी से अपनी जान ना गंवानी पड़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों आज की इस बातचीत से हम बस यही कहना चाहते हैं कि रक्तदान कोई साधारण काम नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन ज़रूरत के समय एक बूंद खून सिर्फ इंसान ही इंसान को दे सकता है।
1: बिल्कुल अंकिता, किसी अस्पताल में कोई माँ अपने बच्चे के लिए परेशान होती है, या कहीं कोई दुर्घटना पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है, तो कहीं कोई मरीज हर महीने खून का इंतजार करता है, ऐसे समय में एक ब्लड डोनर किसी फरिश्ते से कम नहीं होता है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों हमें ये समझना होगा कि रक्तदान करने से हमारा कुछ कम नहीं होता बल्कि किसी की जिंदगी में उम्मीद बढ़ जाती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जब भी मौका मिलेगा हम रक्तदान जरूर करेंगे और अपने दोस्तों, परिवार और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: तो दोस्तों, हमें बातें तो और भी करनी थी, लेकिन हमारे युववाणी का समय हो चला है। तो मैं यानी कि एडिथ
0: और मैं आपकी दोस्त अंकिता
1: को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: आज का दिन समर्पित है उन लोगों को जो बिना भेदभाव, निस्वार्थ और सेवा भाव से मानवता की सेवा करते हैं। 8 मई यानी आज विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है, जो हमें इंसान से प्यार करना सिखलाता है। आप सभी एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से प्यार करें और सभी को प्यार का पैगाम दें। इसी बात के साथ हम शुरुआत करते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक लोग। मैं हूँ आरती और मेरे साथ है महिमा। सभी साथियों को आपको प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, और सभी श्रमिक साथियों को महिमा का भी प्यार भर नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे और साथ ही मौसम का मजा भी ले रहे होंगे। और आरती, जो भी आपने प्रेम का संदेश बांटना सिखलाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस संदेश को हम चाहते

0: हैं कि जितने भी साथी हैं जो सुन रहे हैं, सभी एक दूसरे तक प्यार बांटना जरूर सिखलाएं।
1: बिल्कुल महिमा, क्योंकि ये प्यार और मोहब्बत ही है तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को सुकून दे पाते हैं। तो मानवता की सेवा के लिए बनाया गया रेड क्रॉस समिति शांति का संदेश फैलाता है। अगर वर्तमान समाज की बात करें तो लोगों की आपस में ही नहीं बनती, कह सकते कि इंसान इंसान का ही दुश्मन बन जाता है। लोगों के अंदर एक दूसरे के जलन की भावना आ जाती कि वो कैसे मेरे से आगे बढ़ गया, मैं यहीं रह गया। मतलब ये सारी चीजें इस तरह से लोगों के अंदर हावी हो गई है ना, कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर होते लोग चले जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और आजकल तो बहुत सारी, या तो पड़ोसियों में ही देखते हैं, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत सी ऐसी परेशानी होती है, एक दूसरे से नहीं बनती है। किसी की तरक्की देख करके अच्छा नहीं लगता है लोगों को। लेकिन इसके साथ ही हम अपने साथियों को बतलाना चाहेंगे कि रेड क्रॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय समिति के जो स्वयं सेवक होते हैं, वो बिना भेदभाव के, युद्ध हो गया, महामारी या कोविड के समय भी, या प्राकृतिक आपदा जैसे समय में लोगों की सहायता करते हैं। और यह जो विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है, ये शांति और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह पैगाम देता है कि एक दूसरे से आप निस्वार्थ भावना से प्यार करें।
1: बिल्कुल, मानव सेवा ही तो सच्ची सेवा है, और यह सेवा सिर्फ किसी संस्थान या समिति तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, यह तो हर इंसान को करना चाहिए। हर धर्म में मानव सेवा को ही मूल आधार माना गया है। हिंदू धर्म में नर सेवा ही नारायण सेवा कहा गया है, तो ये कितनी बड़ी बात है महिमा।
0: जी। और इस्लाम धर्म में जकात दान को प्रमुखता से माना गया है। तो वहीं ईसाई धर्म के बारे में बात करें तो ईसाई धर्म में भी कहा गया है कि पड़ोसियों से प्रेम रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और सिख धर्म में कहा गया है कि मानस की जात सबो एके पहचानवो, जिसका मतलब है सारी मानव जाति को एक ही तरह पहचानो। बौद्ध और जैन धर्म में भी इंसानों के प्रति अहिंसा और करुणा का भाव रखने के लिए कहा गया है महिमा।
0: बिल्कुल। और साथियों, इंसान को बाहरी रूप से ज्यादा आंतरिक रूप का महत्व होना चाहिए। बहुत सारे लोग रंग, जात पात और बाहरी सुंदरता को देखकर के बहुत ही आकर्षित होते हैं, पर उन्हें कहना चाहेंगे कि जो बाहरी सुंदरता है उससे ज्यादा आंतरिक सुंदरता का महत्व होता है। कि हम कैसे बात करते हैं, किससे क्या व्यवहार करते हैं, और हमारे चाल चलन से कैसे लोग प्रभावित होते हैं और एक दूसरे के साथ में अच्छा से रहते हैं।
1: कितनी अच्छी बातें तुमने बताई, और आजकल के लोग तो इसी बाहरी दिखावा में
0: हो
1: जा रहे हैं, जो उन्हें कुछ पल की ही संतुष्टि देता है। बोले कहते हैं मटेरियलिस्टिक सुख के पीछे लोग भाग रहे हैं। असली खुशी और संतुष्टि तो लोगों की मदद करने से ही होती है। प्यासे को पानी पिलाकर, भूखे को भोजन खिलाकर जो आत्मसंतुष्टि मिलती है ना, वो 5 सितारा होटल में बैठ कर कभी नहीं मिल सकती है।
0: बहुत बड़ी बात कही आती है आपने। और
1: और महिमा मैं
0: जी,
1: बता दूं कि
0: हाँ
1: मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद कर, कि किसी के चेहरे पे मैं थोड़ी सी मुस्कुराहट ला कर आऊं। तो इसके लिए लोग मुझे कई बार ताने भी मारते हैं कि भाई ऐसा भी किया है, तो मैंने कहा कि एक ऐसा नशा कि एक बार करके दे देखो, फिर आपको पता
0: बिल्कुल।
1: चलेगा।
0: और इस सेवा को, मतलब मानव सेवा को अगर करना जो शुरू कर दिया, जो संतुष्टि मिलेगी ये जीवन भर के लिए होती है।
1: बिल्कुल
0: और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो रास्ते में जाते हैं गर्मी के समय में, जो पंछी होते हैं उनको पानी पिलाते हैं, जो भूखे होते हैं उनको भोजन खिलाते हैं, और जरूरतमंद की हेल्प भी करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो सोशल मीडिया के इस दौर में जीते हैं और दिखावे के लिए, फोटो के लिए, वीडियोस के लिए लोगों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। पर ऐसे साथियों से कहना चाहेंगे कि ऐसी सेवा ही क्या जो बस दिखावे की हो। ऐसी
1: बिल्कुल
0: सेवा करनी चाहिए जो एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं चले।
1: बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही है तुमने। और जब आप सेवा करें तो जगह देख कर ना करें, जहां भी जरूरतमंद नजर आए उनकी सहायता जरूर करें। श्रमिक साथियों, सिर्फ बाहर ही नहीं, कार्यस्थल में भी आप पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाएं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है।
0: बिल्कुल। आज के समय लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं पर इंसान के आंसुओं को नहीं पोंछते हैं। साथियों, जहां आपको दुखित व्यक्ति मिल जाए, उसकी सेवा और मदद में जुट जाए, आपकी एक सहायता किसी जरूरतमंद को ऊपर उठा सकता है।
1: और मनुष्य की पहचान भी तो यही है जो उसे इंसान बनाती है। पता है साथियों, जब आप एक गिरते हुए का हाथ पकड़ेंगे ना, तो कभी आप गिरेंगे तो आपको भी कोई जरूर थाम लेगा।
0: और यही तो जिंदगी का संतुलन भी है।
1: बिल्कुल, तो संसार की धन संपत्ति से ज्यादा मानव सेवा ही आपको सुकून दे सकता है। इसलिए कोशिश करें कि मानव सेवा को अपना धर्म बना लें और सभी को प्रेम का संदेश दें। और महिमा, अब बढ़ते अपने अपने कार्यक्रम की ओर। आज हम सुनेंगे वार्ता और विषय होगा असंगठित मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए क्या उनके कानूनी प्रावधान है। वार्ताकार है अभिषेक कुमार, तो सुनते हैं ये वार्ता।
2: हमारे देश के विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। झारखंड सरकार ने श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संगठित तथा असंगठित मजदूरों के लिए भी झारखंड सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को चाहिए कि वे अपना निबंधन जरूर कराएं। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। देश की कुल कार्यशील आबादी का लगभग 94% असंगठित श्रमिक का है। संगठित श्रमिक, जिनका प्रतिशत 6 से कम है, को नियमित रोजगार, वांछित एवं अनुकूल कार्य दशाएं तथा विभिन्न विकल्पों के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, जबकि असंगठित श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार, मनोनुकूल कार्य दशाएं तथा सामाजिक सुरक्षा तीनों का अभाव रहता है। भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में निर्माण श्रमिक कहा जाता है, भी असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। निर्माण श्रमिकों के लिए विशिष्ट अधिनियमों की आवश्यकता है। यद्यपि निर्माण श्रमिकों के लिए एक सामान्य श्रमिक के रूप में केंद्र राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विभिन्न कानून पूर्व से प्रभावशील थे, तथापि निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण तथा विशिष्ट स्वरूप की सेवा शर्तों को विनियमित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। अधिनियम की धारा के अनुसार निर्माण श्रमिक से अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्ध कुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य, वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करता हो, किंतु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है। ठेकेदार तथा ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पत्थर, टाइल्स, खपरे, मुरम, मिट्टी जैसी निर्माण प्रदाय करने वाले व्यक्ति एवं स्वयं की पूंजी लगाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्माण व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति भी निर्माण की परिभाषा में शामिल नहीं है। श्रमिक साथियों, निर्माण श्रमिकों का वर्गीकरण कोटि के कामगारों के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य में भवन एवं सनिर्माण कार्य से जुड़े 37 श्रेणियों को निर्माण श्रमिक के रूप में शामिल किए गए। पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने वाला, राजमिस्त्री या ईंटों पर रद्दा करने वाला, पोताई करने वाले, पेंटर, बढ़ई फिटर या बार बेंडर, सड़क के पाइप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कुएं खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, पेमैन या मिक्सरमैन, लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, कुएं से गाद हटाने वाले, गोताखोर, हथौड़ा चलाने वाले, छप्पर डालने वाले, मिस्त्री, लोहार, लकड़ी चीरने वाले, कोल तार मिश्रण करने वाले, पंप ऑपरेटर, मिक्सर चलाने वाले, रोलर चलाने वाले, बड़े यंत्रारे जैसे मशीनरी पुल का कार्य, लगे खलासी चौकीदार, मोजाइक पॉलिश करने वाले, सुरंग कर्मकार, संगमरमर पत्थर कर्मकार, सड़क कर्मकार, चट्टान तोड़ने वाले कर्मकार, सन्निर्माण कार्य में जुड़े मिट्टी कार्य करने वाले, चूना बनाने की प्रक्रिया में लगा कर्मकार, बांध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया के नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, कारखाना अधिनियम 1948 का केंद्रीय अधिनियम के अधीन ईंट बनाने में लगे कर्मकार, पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार, श्रमिक औजार सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ट्रेड के लिए औजार की सहायता हेतु राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कूली, पेंटर आदि को ब्रांडेड कंपनियों के उचित गुणवत्ता के औजार किट उपलब्ध कराए जाते हैं। श्रमिक साथियों, झारखंड सरकार ने ई श्रम कार्ड से जुड़ी योजनाएं और अपने श्रमिकों के लिए इसका निबंधन करा दी। सरकार की श्रमिकों के लिए योजनाएं इस प्रकार है। झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग ने शुरू की है। यह योजना 18 से 60 साल के सभी पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देती। मेधावी पुत्र अथवा पुत्री छात्रवृत्ति योजना इस प्रकार। इस योजना के अंतर्गत स्नातक और स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। एक्सेल कार्यक्रम। इस योजना में 10+2 पास या विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को लक्षित करती है। इस योजना के तहत कॉलेजों में पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ई श्रम कार्ड से जुड़ी कुछ और योजनाएं इस प्रकार 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद लाभार्थी को कम से कम 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को 50% मासिक पेंशन मिलती है। अगर पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो उन्हें 6000 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान है। इस योजना के तहत सरकार श्रमिक साथियों को 2,00,000 रुपए तक का निःशुल्क बीमा करा रही है। श्रमिकों के अलावा सरकार रिक्शा चालक के दुकानदार, निजी चालक, घरों में काम करने वाली महिलाएं, दुकानों में काम करने वाले को भी इसका लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स जमा करने वाले व CPS, NPC, EPFO से जुड़े लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका पंजीयन लोक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता। आवेदन के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक का खाता नंबर होना जरूरी है। ई श्रम कार्ड बनने के बाद बच्चों को छात्रवृत्ति, साइकिल, सिलाई मशीन, दैनिक काम के लिए उपकरण आदि मिलेंगे। भविष्य में राशन कार्ड को इससे लिंक किया जाएगा। इससे देश के किसी भी राशन दुकान से आप राशन भी ले सकेंगे। झारखंड सरकार की ई श्रम कार्ड योजना का लाभ सभी श्रमिक साथियों को उठाना चाहिए। श्रम विभाग व अन्य स्तर से हर गांव और वार्ड में इसके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा झारखंड सरकार निबंधित लाभुकों के लिए सिलाई मशीन सहायता योजना के मध्य सिलाई मशीन का वितरण किया जा चुका। कुल 74 लाभुकों को सिलाई मशीन का वितरण किया जा चुका है। इस योजना के मध्य में लगभग 4,32,900 रुपए व्यय किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत रांची जिले में निबंधित महिला लाभुकों के मध्य सिलाई मशीन का वितरण किया गया एवं इस योजना मद में कुल 99,450 रुपए का व्यय किया गया है। जमशेदपुर जिले में 57 सिलाई मशीन का वितरण निबंधित महिला लाभुकों के मध्य किया गया व इस मद में 3,33,450 रुपए राशि का व्यय किया गया है। शेष जिलों में भी निबंधित लाभुकों को योजना से आच्छादित किए जाने संबंधित कार्रवाई चल रही है। सिलाई मशीन सहायता योजना के प्रावधान इस प्रकार, इसके अंतर्गत बोर्ड के निबंधित महिला लाभुकों को बोर्ड के द्वारा उचित प्रशिक्षण के उपरांत उचित गुणवत्ता की सिलाई मशीन दी जाएगी। योजना की पात्रता इस प्रकार है, निबंधित महिला श्रमिकों के लिए उम्र 35 से 60 वर्ष के आयु के मध्य हो। योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है, आवेदक के द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन श्रम अधीक्षक के कार्यालय में जमा किया जाएगा। आवेदन में निबंधन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है। सिलाई मशीन सहायता योजना व साइकिल सहायता योजना में से लाभुक एक ही योजना का लाभ ले सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि झारखंड सरकार की विकासशील योजनाओं के द्वारा हमारे सभी श्रमिक साथी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड सरकार की श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं लेकर पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। अवसर का लाभ उठाने में श्रमिकों की भागीदारी जरूरी है।
1: तो महिमा, हम ये जो सुन रहे थे वार्ता, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं कल्याणकारी हमारे असंगठित श्रमिकों के लिए, उसकी जानकारी दी गई। तो साथियों, आपको आपके लिए जो भी योजनाएं हैं, जो भी कानूनी प्रावधान है, उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका लाभ उठा के आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, और जो जानकारी दिया गया है वो जानकारी को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, दूसरे साथियों को भी ज़रूर से बतलाना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो महिमा, आपको पता है कि हम आकाशवाणी की वजह से ही अपने श्रमिक साथियों से रूबरू हो पाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हैं, है ना?
0: हाँ बिल्कुल आरती, वास्तव में आकाशवाणी भारत की आवाज, भारत की पहचान है, या देश का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में से एक है।
1: बिल्कुल साथियों, यह एक ऐतिहासिक विरासत है। इसकी स्थापना 8 जून 1936 को हुई थी। 2026 में यह अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है और आकाशवाणी 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम को प्रसारित करता है। देश भर में इसके 500 से अधिक प्रसारण केंद्र हैं, जो देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाओं की विविधता को दर्शाते हैं।
0: बिल्कुल, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे आकाशवाणी नाम दिया था, जिसका अर्थ है आसमान से आने वाली आवाज। 1957 से शुरू हुई विविध भारती सेवा इसके सबसे प्रसिद्ध वाणिज्यिक सेवाओं में से एक है। आकाशवाणी समाचार, सूचना, संस्कृति और मनोरंजन के माध्यम से देश के सुदूर कोनों तक विश्वसनीयता के साथ अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है।
1: बिल्कुल महिमा, हम जब छोटे थे बचपन से हमें याद है कि हम हवा महल सुन के डिनर किया करते थे, मतलब कितनी जानकारी, ज्ञानवर्धक बातें, इतना मनोरंजन। तो सचमुच में आकाशवाणी जो है अपने आप को, सारी दुनिया को समेटे हुए अपने आप में है। तो मनोरंजन की जब बात चल पड़ी है तो तुम हमें एक क्या गीत नहीं सुनवाओगी?
0: बिल्कुल।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: भी शाम तो सचमुच में बहुत मस्तानी है महिमा, जब चिलचिलाती धूप, इतनी कड़ी, इतनी ज्यादा गर्मी और उसके बाद बारिश आना, सचमुच में एक बहुत ही अच्छा सुकून देने वाला पल होता है और हम इस मौसम को एंजॉय तो कर ही रहे
1: बिल्कुल
0: हैं। और चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। महिमा, कौशल निर्माण व्यक्ति के ज्ञान, तकनीकी क्षमता और व्यवहारिक योग्यताओं को निखारना ताकि निखारता है ताकि वह न केवल रोजगार योग्य बने बल्कि सम्मानजनक जीवन भी जी सके। यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का बहुत ही उत्तम मार्ग है ना?
1: और तकनीकी कौशल सीखने से युवा वर्ग न केवल नौकरी पाने के योग्य बनते हैं बल्कि वे आत्मनिर्भर होकर आत्मगौरव भी महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल
1: जब भी जो हमारे साथी है अपनी जीविका अपनी प्रतिभा के बल पर वो मतलब कमाते हैं तो उनका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और वे एक गरिमापूर्ण जीवन की नींव भी रखते
0: जाहिर
1: हैं।
0: सी बात है कि हम आत्मनिर्भर तभी होंगे जब हमारे हाथ में हुनर होगा, हमारा
1: बिल्कुल
0: कौशल उन्नत होगा और तभी हम काम को अच्छे से करेंगे और काम में उन्नति होगी हमारी।
1: और हुनर से पहचान भी मिलती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: तो एक कुशल व्यक्ति न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाता है, जिससे समाज में सम्मान भी मिलता है। और सही कौशल विकास केवल तकनीकी नहीं बल्कि मूल्यों से भी जुड़कर हमें एक बेहतर नागरिक बनाता है।
1: आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कुशल व्यक्ति एक बेहतर नागरिक बनता है और दूसरों को भी बनाता है। और यह जो कौशल है वह एक पूंजी है जो व्यक्ति को रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बना
0: बिल्कुल,
1: सकती
0: हाँ हाँ
1: है
0: ये बात तो उन्हें बहुत पते की कही
1: जिससे जीवन में सम्मान और स्वाभिमान का समावेश होता है।
0: महिमा। इस बात से मैं यही कहना चाहूंगी कि साथियों, आप ना आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे संतुष्टि आपको नहीं होनी चाहिए कि बस मैं जहाँ हूँ वहाँ टिकूँ। हमेशा अपने अंदर ये चाहत होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए कि मुझे और कुछ नया सीखना है और
1: अपग्रेड
0: आगे
1: करना
0: बढ़ना,
1: चाहिए।
0: अपग्रेड अपने आप को हमेशा करते रहना चाहिए। और स्टॉप होकर अगर हम चलेंगे तो जहाँ हैं हम वहीं रह
1: वहीं रह
0: जाएंगे, है ना?
1: जाएंगे आप।
0: तो हमेशा सीखने की जो भावना है, जो लालसा है, वो अपने अंदर हमेशा जागृत करके रहें। और महिमा, आगे हम ये बताएंगे कि हमारे साथियों के लिए और क्या विशेष है।
1: आज अभी और हम बात करेंगे ट्रैफिक नियमों के बारे में क्योंकि ये जो ट्रैफिक नियम होते हैं वो हमारे साथियों के लिए बहुत ही विशेष है और जीवन रक्षक भी होते हैं।
0: बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं आपके जीवन का सम्मान भी। इसलिए साथियों, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। गाड़ी चलाते समय आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें, दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनें। और हाँ, नशा करके आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना, क्योंकि कहते हैं ना कि नशा ही नाश का द्वार होता है।
1: जी, और जब आप सड़क पर चलते हैं साथियों तो बाएं साइड ही चले। अगर भारत के बारे में बात करेंगे तो बाएं साइड ही जो पैदल चलते हैं उनको चलना चाहिए। और अगर आप दोपहिया या चार पहिया वाहन से कहीं जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो स्पीड है वो लिमिट में रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह के बाइक का इस्तेमाल करते हैं और स्पीड इतना ज़्यादा स्पीड चलाते कि वो आसपास नहीं देखते कि कौन जा रहे, कौन बुजुर्ग जा रहे, कौन बच्चे जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि कई लोगों के अंदर, जो खास करके युवा वर्ग की बात करें, तो स्पीड चलाना उनकी शान की बात होती है। तो साथियों, स्पीड चलाना शान की बात नहीं, पर गाड़ी समझदारी, संयम और नियम से चलाना ही शान की बात है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उसके लाइट का पालन करें, मोबाइल का इस्तेमाल वाहन चलाते समय बिल्कुल भी ना करें।
1: और कोशिश करें कि हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल ना करें। और जब भी आप रास्ते में जा रहे हैं, वाहन चला रहे हैं और आपके पीछे में एम्बुलेंस आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो उसे रास्ता जरूर दे क्योंकि
0: बिल्कुल,
1: आपकी जिम्मेदारी होती है।
0: ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ देश का आधार भी हैं। तो
1: बिल्कुल
0: हमें जो एक सिविक सेंस जो नागरिक होने का होता है, सम्मानजनक नागरिक का, उसकी जवाबदेही हमारे अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमें ही निभानी है। तो महिमा, चलो अब हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने साथियों का मनोरंजन फिर से करें। तो सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: महिमा, ये तो मौसम सच में मस्त हो गया है,
1: झूमता हुआ।
0: झूमता हुआ। तो चलो इस वादे के साथ हम अपने साथियों से फिर से मुखातिब होंगे, अपनी दोस्त आरती
1: और महिमा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति आज बोकारो पहुंची। समिति के अध्यक्ष और राज्य उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगामी 11 और 12 मई को रांची में 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के जनजातीय छात्रों को राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा। साहिबगंज जिले के किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में 20वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस बैठक में पिछले वर्ष के लक्ष्यों की समीक्षा और नए वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर आज सिमडेगा के सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि एकत्रित रक्त का उपयोग जिले के थैलेसीमिया मरीजों और आपातकालीन स्थिति में भर्ती रोगियों के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

0: गच लगाओ गच बचाओ।
1: कार्यक्रम सुनो या सो भाई बहन मन के हमार बट्टे बहुत बहुत जोहार, और शशि भाई और के भी बहुत बहुत जोहार।
0: सब सुनो या भाई बहन मन के जोहार, अरविंद भाई और के भी जोहार। कैसे हाल चाल है?
1: एकदम हालचाल नगद है शशि भाई। यार देखो गर्मी का संगे संगे
0: गर्मी में जार कर मजा ले बाते सेल का
1: एकदम सुपट का थी पानी जे बहुत जोर बरखा आवत है और रात के नहीं ओढ़े पड़ जाते शशि
0: भाई। तो है कहते कि दिन में गर्मी बापा पानी अलग से बरसात कर जाता ले रात के जार कर तीनों मौसम कर मजा है। लेकिन खास करके मजा के संगे ध्यान भी रखे है कि इखन तबीयत मन खराब होकर ज्यादा संभावना रहे।
1: हाँ, हाँ।
0: इसे नहीं कि मौसम कर मजा करने शरीर के नुकसान है।
1: एकदम ठीक कहले रोरे। अपन जब भी मौसम बदलेला शशि भाई तो हमरे मन के अपन जीव सवांग ऊपरे मगरा ध्यान रखे के, खास करके छोट छोट छुआ मन उमन कर जे शरीर कर बनावट है उमन कर इम्यून सिस्टम जे के हमरे मन कहिला रोग से लड़े कर क्षमता जे होवेला से कम होवेला तो मौसम बदलेला असर उमन में होवेला।
0: और बड़ बुजुर्ग मन में भी इसने होल जे छोट छुआ मन है उतने तो हो मन के तनी सुन मौसम में ध्यान देवे
1: एकदम। और सुपट रोरे कहा थी देखो हमरे मन खेती हर ही तो हमरे मन कर जिसन जीव सवांग बगड़ेला नहीं शशि भाई उसने हमरे कर जे माटी है वो भी बीमार पड़ेला तो हमरे मन खेती हर ही तो अपन शरीर कर संगे संगे माटी कर भी हाल समाचार लेते रहे के चाहिए हमरे के
0: ठीक है कहले।
1: और देखो हमरे मन का होला नहीं कि उपज बहुत बगरा से बगरा लेवे कर कोशिश में हमरे मन का करेल शशि भाई की रासायनिक खाद कर अंधाधुंध प्रयोग करे शुरू कर दे ऊपर से माटी है कि धीरे धीरे बीमार होते जाते।
0: हाँ एत बगरा खाद कर प्रयोग करते लेकिन एखन कहते जैसे पानी बरखा कर बात करती गर्मी के दिन में बरसात के दिन में भी जब खेती में लागत रहे पानी बरखा होत रहे तो देखब न कि दोइन में धान लागल रहते सैकड़ों में मछली मन भेटात रहे लेकिन अब देखो एत प्रयोग करल जाते रासायनिक खाद का चक्कर चलते हम नहीं बिटाले और मछली मन का संगे संगे और खाते कि छोटा छोटा केचुआ का कहे ना
1: जोकटी
0: जोकटी से भी है लेकिन धीरे धीरे सब खत्म होते जाते।
1: हाँ।
0: जे कि माटी ले बहुत लाभदायक रहे फायदा करत रहे
1: एकदम मतलब ये कहो नी कि किसान कर वो सबसे मित्र कीट हो ला नहीं।
0: हाँ, हाँ।
1: और सुपर टूरे कहा थी कि एक तरह से
0: हटा थी हाँ। फेट के
1: भगवाई देती हाँ। होगी मुराई देती है हमरे मन तो छुपट कहा थी रोरे कि जे माटी भीतरे कर जे मतलब वो ये होएला वर्मी जे के हमरे मन कहिला चाहे उके केचुआ कहो चाहे उके जोकटी कहिल दो चाहे जोंक हमरे मन कहिला नहीं कि हाँ। जोंक धरे ला जब हमरे मन कादो में उतरत रही तो डरात रही छोट छोट बेरा तो वह हके तू का करेला कि जोताई कर काम करेला माटी भीतरे कर माटी के बाहरे करेला
0: ठीक कहली जैसे ट्रैक्टर से या तो हर से हमरे जे माटी के जोतिल बनाई ले खेत के तो का कहना बड़ बड़ रूप में होला लेकिन जब केचुआ से होला तो एकदम सूक्ष्म मतलब छोटा रूप में और छोटा रूप में होला तो पूरा माटी ऊपर से नीचे पूरा का कहना बन जाएला काम कर जे
1: एकदम ठीक कहते रोटा बेटर जैसन घूमेला नहीं वही काम केचुआ करेला एकदम सुपर भाई तो हमरे का सबसे मित्र कीट होएला वो और उकर संरक्षण बहुत जरूरी है। संगे संगे देखो वो तो खैर प्राकृतिक रूप से हो गेलक शशि भाई अब हमरे मन आपन से वर्मी खाद तैयार कर सकीला वर्मी कर जुगाड़ कर लो वर्मी रोर जितना भी कृषि विज्ञान केंद्र है उकर में भी मिलेला चाहे कोई भी किसान अगर पहले से वर्मी कंपोस्ट अगर बनाते तो उकर से भी 1 किलो भी अगर उरे वर्मी ले लाना थी और बेड उकर में बनाए के अगर दे देती तावे वाला 1-2 साल में रोठीना लाखों कर संख्या में वर्मी तैयार हो जाए और उकर से वर्मी खाद भी रोड़े बनाए सकीला और खाद जब बन जाए शशि भाई तो जब उकर क्वालिटी हम तो खुद से बना ही इसलिए हम बता थी एकदम जैसन हमरे मन चाय पत्ती के देखी लानी उसने छोटा छोटा दाना चाय पत्ती नियर और समझो कि गोबर और जे भी अपशिष्ट पदार्थ जे के कहे ना हमरे मन फेंका बेकार में फेंक देवीला सिके मिलाए के जब रोड़े खाद बनाती तो उकर जब सेंट के रोड़े सुंघवनी तो एकदम बड़ा खुशबूदार होवेला वो खाद और जितना देखे के लिए सुंदर जितना सूंघे के लिए बेस उतना हमारे घर खेती ले भी बढ़िया।
0: जैसे देखो गर्मी के दिन में पूरा माटी जब एकदम रौद में पूरा सूख जाएला एकदम भुरभुरा हो जाएला और वह बेरा तनी सुन पानी आवेला तो से बेरा का जे महक है
1: हाँ। सोना सोना महक एकदम खुशबू तो भाई हमरे मन के अपन माटी कर जिसन जिसन हमरे मन अपन स्वास्थ्य में ध्यान देवीला मौसम बदलेला तो अपन स्वास्थ्य में ध्यान देवीला उसने हमरे मन के बीच बीच में माटी कर जे स्वास्थ्य से के बनाए के रखना जरूरी है और उकर में वर्मी कंपोस्ट कर बहुत बड़ा भूमिका है और जो भी किसान से हम भेंट करी ला शशि भाई, खुद हम भी किसान ही तो जानी ला कर लाभ के, मतलब एक साल तो रू के पता नहीं चली, लेकिन दोसर साल से रो खेत कर उपज जो है नी से अचानक से बढ़ जाएला, और इके कहल जाएला नी कि काला सोना, एकदम काला सोना है भी। और तो भाई इकर प्रयोग हमरे मन के जरूर से जरूर करे के चाहिए, ताकि अपन खेती के बढ़िया से बनाए के रखो, और जे भी उपज है उके दुगुना करे कर हमरे मन के दरकार है आज के समय में। हाँ, और आधुनिक खेती बहुत जरूरी है शशि भाई आज के समय में।
0: हाँ, समय बदलत है तो समय के अनुसार हमरे मन के खेती बाड़ी में कर रूप के बदले चाहिए
1: एकदम। तो शशि भाई आगे भी हमरे मन बतियाते रह, चलो तो कार्यक्रम कर और करीला एक ठो नागपुरी लोकगीत से, कलाकार हैं देवदास विश्वकर्मा और उनका संगीत मन।

0: शशि भाई, एक ठो सूचना है और बहुत कारगर सूचना है हमारे मन कर, जितना भी खास करके युवा किसान है उमन लगिन। तो रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र मोरहाबादी रांची बटले 18 से 35 साल कर युवा मन ले कृषि और कृषि संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करल जाते। तो गांव कर जितना भी स्वावलंबी छुआ मन है उमन उन्नत खेती वैज्ञानिक तरीका से करे के लिए, चाहे समेकित खेती, मधुमक्खी पालक, खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमिता विकास, लाह उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक उत्पादक, मत्स्य पालन जेके मछली पालन कहे ना, माली, मुर्गी पालन, गौ पालन, बढ़ई गिरी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, सुपरवाइजर, ईसन सब प्रशिक्षण देवल जाते। तो इकरले ये आवासीय प्रशिक्षण है जेकि निःशुल्क है, खास करके जितना भी अनुसूचित जनजाति कर अभ्यर्थी मन है, छुआ मन है, उमन लगिन ये बिल्कुल से निःशुल्क है और हुआ रही के ही मन प्रशिक्षण ले सके ना। और इकर लगिन प्रत्येक महीना, हर महीना कर 1 तारीख के नामांकन करल जाते। तो जितना भी खास करके अनुसूचित जनजाति कर छुआ मन ही, और उरे मन अगर ये सब कर अगर प्रशिक्षण लेवे खोजिला उरे मन खेती बाड़ी से जुड़ल, चाहे और भी कोई भी अगर रोरे मन उद्यमिता विकास लगिन अगर प्रशिक्षण लेवे खोजिला, तो रोरे मन आय के संपर्क कर सकिला रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची में। और इकर लगिन कुछ दस्तावेज है जेके रोरे मन याद रखब, एक अगर अपन संगे लेके रोरे मन के आवे है, जेकर में आधार कार्ड और जन्म और जाति प्रमाण पत्र और संगे एक ठो फोटो लेके भी आना है। तो भाई अपन हाथ के जगन्नाथ बनाएक है, तो रोरे मन के पहुंचे है रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची। तो ना भूलाब 18 से 35 साल कर छुआ मन रोरे मन ही आए के निशुल्क प्रशिक्षण ले सकीला। बड़ा जरूरी सूचना रहे सूचना। अब आगे हमरे मन के जैसे एखन हमरे मन बात करत रही कि गर्मी कर मौसम है, इकर में कुछ एखन बारिश हुआ है, तो किसान मन ले जे फसल तैयार है शशि भाई, उकर ले थोड़ा सन तो नुकसान एखन
1: हाँ,
0: बरखा पानी
1: देखो
0: पहुंचा है।
1: बेमौसम बरसात वाला का माय गलत, तो इबरा तो फजे सब्जी फसल में लागल है से के तो नुकसान करते हैं। देखो और एखन बीच में पखल पानी भी संगे भी होते, तो बहुत तैर कर देखभाल का जरूरत है एखन कर बेरा में।
0: हाँ, तो गर्मा खेती में खास करके हमरे मन सब्जी कर खेती करी ला, बहुत किसान मन एखन लगाए भी चुके हैं और किसान मन जे नहीं लगाए हैं वो मन लगाए कर तैयारी भी करत हैं। तो चलो हमरे मन जानी लगी सब्जी कर वैज्ञानिक खेती, खास करके गर्मी कर मौसम में इकर प्रबंधन हमरे मन कैसे कर सकेला, देख रेख कैसे कर सकेला, इकर बारे में हम उनके जानकारी देवत हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी जी, और इनका से बात कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: साथियों जोहार, नमस्कार। किसान साथियों, अभी आपने अपने खेतों में सब्जी लगा रखी है, खासकर कद्दू वर्गीय फसलों की हम बात करेंगे, जैसे लौकी, नेनुआ, खीरा या फिर बैंगन, टमाटर, बूंदी, भिंडी, इन सब सब्जियों को आपने अपने खेतों में लगा रखा है। और इस समय तेज़ धूप भी पड़ सकती है और तेज़ बारिश भी हो सकती है, ओला भी पड़ सकता है, मतलब प्रकृति का कोई भरोसा नहीं कब किस तरह से अपना वो मंजर दिखला दे। तो जब काफ़ी तेज़ बारिश हो तब हम इन सब्जियों में क्या प्रबंधन करें, किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन करें, कब हम सिंचाई करें, और तेज बारिश के समय हम किन किन बातों का ख्याल रखें ताकि फसल अच्छी हो, फसल की पैदावार अच्छी हो, और जब बढ़िया फसल होगा तभी आपकी आमदनी अच्छी हो पाएगी। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी साहब। आप वैज्ञानिक हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में। अंसारी सर, स्वागत है आपका किसान वाणी कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: इस समय सब्जियों में कौन कौन से वैज्ञानिक प्रबंधन हम करें, जल सही समय मात्रा पर दें, तेज बारिश हो तो क्या करें, बहुत तपन हो, तेज धूप हो, तो हम कैसे अपने इन फसलों का, इस कद्दू वर्गीय फसलों का बचाव करें?
3: देखिए किसान भाई, जैसा कि वो खेती करते हैं तो इस चीज़ों से बहुत परिचित हैं कि तेज़ धूप तो पड़ता है और तेज़ धूप गर्मी से तो सब्जियों को नुकसान होता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से मौसम बिगड़ेगा और तेज़, बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी, उससे भी हमारे सब्जियों को नुकसान होता है। किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि बिजली की कड़क भी आती है और साथ ही साथ ओलावृष्टि होती है, बर्फ़ के ओले गिरने लगते हैं, जिसको हम लोग ओलावृष्टि कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पत्थर गिर गया है, तो इससे तो बहुत भारी नुकसान होता है सब्जियों को। तो इन परिस्थिति में वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान भाइयों को अपने सब्जियों को कैसे बचाना है, क्योंकि जो गर्मा सब्जी है ऑलरेडी आपके खेतों में, हमारे किसान भाई खेतों में है और अभी फल फूल की अवस्था में है, चाहे कद्दू वर्गीय सब्जी हो जैसे लौकी, नेनुआ, झिंगी, करेला, खीरा, ककड़ी इत्यादि, कहीं कहीं पे तरबूज की भी खेती हमारे किसान भाई करते हैं, हाल के दिनों में खरबूजा का भी खेती करना शुरू किए हैं, और भिंडी और बोधी तो बहुत अच्छा सब्जी है ही गर्मी के मौसम का, इसकी भी हमारे किसान भाई खेती करते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर टमाटर, बैगन, ये भी हमारे प्रदेश में गर्मी के मौसम में होता है। तो इन सब चीज़ों को जिसमें हम बात करेंगे कि कद्दू वर्गीय ये गर्मी में बहुत अच्छा होता है, भिंडी को भी कोई बहुत समस्या नहीं है, बोधी को भी कोई समस्या नहीं है, टमाटर गर्मी से थोड़ी प्रभावित होती है, तेज धूप नहीं सहन कर पाता है और पत्ते तो उसके झुलसते ही हैं, फल भी प्रभावित होता है और तेज धूप से इसमें सन स्कॉर्चिंग हो जाता है और सही इसका रंग नहीं पकड़ता, सफ़ेदी टाइप का पीला होता है और डैमेज होता है, फ्रूट क्रैकिंग भी होती है, यानी नुकसान टमाटर को ज़्यादा होता है। तो अगर बहुत तेज धूप हो तो किसान भाई थोड़ा सा अगर खर्च करे अपने टमाटर के फसल में तो 8 फीट की ऊंचाई पे खूंटा गाड़ दें और एक शेड नेट हरा रंग का आता है उसको अगर ऊपर से छप्पर की तरह दे दे, साइड में खुला रहे कोई दिक्कत नहीं, गर्म हवा चलती है लेकिन उतना सह लेगा फसल। ये जो शेड नेट है, शेड मतलब ही होता है छाया वाला जाली, शेड नेट छायादार जाली, तो ये धूप की गर्मी को आधा कर देता है, तो जिससे जो गर्मी से जो फसल को नुकसान होने वाला था खासकर टमाटर को वो नहीं होगा। अन्य सब्जी जैसे कद्दू वर्गीय है जिसमें मैंने बोला लौकी, नेनुआ, झिंगी, करेला, खीरा, इसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, जितनी गर्मी उतना अच्छा होगा, एक सीमा तक, अगर 45 डिग्री से ऊपर जाता है, 48-49 है, उतना तो जाता नहीं मेरे प्रदेश में, लेकिन कहीं कहीं पे 47-48 जैसे प्लामू में चला जाता है या सिंहभूम के क्लिप्स इलाकों में, खासकर जमशेदपुर के इलाके में, धनबाद में कभी कभी चला जाता है, तो वहाँ पे झुलसने की समस्या इन सब्जियों में भी होती है। तो उसको बचाने के एक ही उपाय है कि आप जल का उचित प्रबंधन करें हमारे किसान भाई, समय समय पर सिंचाई करें। देखिए होता क्या है कि गर्मी का मौसम है, आप बहुत भारी मिट्टी में करेंगे तो सब्जियां नहीं होती है, थोड़ी हल्की मिट्टी चाहते हैं हम लोग ताकि अच्छा फसल हो, तो हल्की मिट्टी है तो पानी जल्दी जल्दी सूखेगा, तो सिंचाई जल्दी देनी होगी, एक तो मौसम की तपिश, ऊपर से मिट्टी भी आप थोड़ी मुलायम, हल्की मिट्टी लेके खेती किए हैं, वैसी जगह पे आपकी बाड़ी होती है, ये आप जो सब्जी की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो सिंचाई आवश्यकता अनुसार 5 से 6 दिनों में, कहीं कहीं 4 दिनों में आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे हमारे किसान भाई, खासकर कद्दू वर्गीय सब्जियों में जिसमें लौकी है, नेनुआ है, झिंगी है, खीरा है, ककड़ी है, तो ये सब्जियां क्या होती है, अगर फल के बढ़वार के समय फूल से फल बला, अब ये फल का विकसित होते रहता है, ये तो कंटिन्यूअस है, हर दिन तोड़ते हैं, एक दिन दो दिन के गैप से हमारे किसान भाई इन सब्जियों को, पानी की जहां कमी होगी फल तीता हो जाएगा। हालांकि तीता होने का कुछ और भी कारण है, कभी कभी आप पानी की कमी नहीं कर रहे हैं फिर भी तीता हो रहा है, वो एक वैज्ञानिक कारण है जो किसी किसी प्रभेद में होता है, मेटाजेनिया इफेक्ट हम लोग कहते हैं, वो कुछ जेनेटिक कारण है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्मल वेराइटी जो बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा दूसरे के खेतों में हो रहा है, लेकिन आपके खेत में अगर तीता हो रहा है वही वेराइटी, इसके मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं फल के बढ़वार के समय उसको पानी की कमी कर दिए। अगर 2 दिन के पानी की टान आप कर दिए, रोक दिए, और उस समय कुकुरबिटेसिन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये खासकर लौकी, नेनुआ, झिंकी, खीरा में तीता होना आम बात है, आप बाजार में अक्सर आप खरीदते हैं तो पहले कहते हैं खीरा तीता तो नहीं है, खीरा में तो सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए हमें जल का उचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी है अगर हमारे किसान भाई गर्मा खेती कर रहे हैं। तो ये बात हुई। अब अगर दूसरी बात, जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि नहीं कि अगर तेज बारिश हो जाए, तो हमारा प्रदेश खासकर झारखंड प्रदेश है, रांची तो उसमें सबसे अधिक, रांची और आसपास का जो ज़िले है इसमें क्या है कि अचानक से मौसम बिगड़ता है, दोपहर 12-1 बजे तक बढ़िया धूप है, लगेगा आज बारिश नहीं होगी, अचानक से बादल उमड़ेगा और तेज आंधी तूफान बारिश शुरू हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति में सारी सब्जियां प्रभावित होंगी, तेज बारिश अचानक से होगी तो प्रभावित होंगी, चूँकि आपने जो खेत बना रखा है, क्यारी बना रखा है गर्मी के मौसम में उचित जल प्रबंधन के लिए, सिंचाई करने के लिए, तेज बारिश होगी तो जल जमाव की समस्या होने के डर है, तो जल निकासी तुरंत करना पड़ेगा, और तेज आंधी तूफान बारिश हुई है या फिर उसके साथ ओले पड़ गए हैं, बर्फ़ के जो पत्थर जैसा होता है वो ओला पड़ जाता है, बहुत लोग गलती से बर्फ़बारी कह देते हैं, ये बर्फ़बारी नहीं है, ओला वृष्टि है, अंग्रेजी में हेल स्टॉर्म कहते हैं और आम भाषा में किसान पत्थर गिरा है कह देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले अगर जल जमाव जैसी स्थिति बनी है, तेज़ बारिश हुई है, तो रात भर भी अगर जल जमाव रह जाएगा तो सब्जियाँ प्रभावित होंगी। तो पहले तो जल की निकासी की व्यवस्था करना है, नाली काट के जैसे आपको हमारे भाई कर ले। दूसरी बात है, दूसरे दिन जाएं और जितने पत्ते टहनियां नीचे टूट के गिर गए हैं, फल गिर गए हैं, उसकी सफाई कर दें। और एक सावधानी के तौर पे, अब जख्मी पौधा हो गया है ओला से या तेज बारिश से आंधी तूफान से, तो अब उसमें जख्म हो गया है, पत्ते टूटे हैं, टहनियां टूटी हैं, तो उससे इन्फेक्शन का चांस होता है। तो सावधानी के तौर पे हमारे किसान भाई एक फफूंद नाशक कार्बन डाइजीम नाम की दवा आती है, 1 ग्राम प्रति लीटर उसे दे दें। हालांकि ये दवा प्रतिबद्ध हो चुकी है, लेकिन दूसरा इसका ऑप्शन नहीं है, किसानों को मिल नहीं पाता है, इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं। लेकिन इसके लिए दूसरी दवा ट्यूबाकोनाजोल नाम की एक दवा आती है, उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें, और नहीं मिले तब मजबूरी में कार्बन डाइजीम भी आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से प्रतिबंधित किया गया है, हम क्षमा चाहेंगे इसमें। लेकिन चूंकि किसानों के पास ऑप्शन नहीं है, उसका नुकसान भारी हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि एक छिड़काव आप कर सकते हैं इसका, नहीं अगर ट्यूबाकोनाजोल मिल जाए तो आप उसे करें, और इसके साथ आप एक कीटनाशक मिला दें, जैसे मिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, या फिर दूसरी दवा और जो सरकार ने अनुशंसित की है उसमें से मिडाक्लोप्रिड अभी है, उसका 1 ml प्रति लीटर दोनों मिला के एक छिड़काव सावधानी के तौर पे कर दें, तो जो बारिश के वजह से संभावित नुकसान होने की संभावना है कीड़े बीमारी की, उससे आपके फसल बचे रहेंगे। किसान भाइयों को हम इस मामले में ये सलाह देंगे
2: जी, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल आपकी सही रहेगी।
3: हाँ, बची रहेगी, चूंकि देखिए एक तो गर्मी से है, मैंने कहा पहले छाया देकर टमाटर को बचाएंगे, नेट से सिंचाई प्रबंधन अच्छे से करेंगे, तेज आंधी तूफान बारिश ओलावृष्टि हो तो कैसे बचाएंगे, अगर इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो और गर्मी में कोई की बीमारी और कीड़े की बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। हाँ, अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, बारिश रेगुलर हो रही है, वातावरण में नमी आ गई, तब फिर जैसे जैसे कीड़े पनपने लगेंगे, तो ये जो इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा मैंने कहा, अगर जैसे अभी डेली डेली बारिश हो या एक दिन छोड़ छोड़ के बारिश होगी, तो वातावरण में नमी होगी और तापमान भी गिर के 30-32 डिग्री तक आ जाएगा, तब वैसी स्थिति में कीड़े बीमारी भी ज्यादा पनपने लगेंगे। तब हमारे किसान भाइयों को हर 10-15 दिनों में इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा है, उसका 1 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब्जियां प्रभावित होंगी और उत्पादन भी प्रभावित होगा
2: जी। फसल में चमक हो, पैदावार उसकी अच्छी हो, अच्छे तरीके का लौकी हो, नेनुआ बढ़िया हो, और बैंगन में चमक हो, टमाटर अच्छा हो, बोधी भिंडी सब अच्छे तरीके से बढ़िया उत्पादन ले पाए, किन किन और बातों का ध्यान रखा जाए?

0: फास्फोरस और 50 kg पोटास देते हैं, खासकर ये जो गर्मी फल में हम जैसे कहा आलू की नेनुआ, झिंगी, कद्दू, करेला, टमाटर, बैगन, ये मैंने जो
1: इसका
0: कहा,
1: छिड़काव करते हैं।
0: हाँ नहीं, इसमें देते हैं खाद के रूप में,
1: अच्छा
0: रासायनिक उर्वरक के रूप में,
1: जी
0: 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 50 kg पोटास प्रति हेक्टेयर। ये जो मैं बताता हूँ, हम लोग वैज्ञानिक लोग
1: जी
0: बताते हैं हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है और 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, ये हमारे किसान भाई जानते
1: जी
0: हैं। तो 2.5 एकड़ मतलब 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा की जो ज़मीन होगी वो 1 हेक्टेयर होगा, 2.5 एकड़ होगा, उसका ये दर है। अब क्या है, 100 की जो नाइट्रोजन जो हम कह रहे हैं और 50 kg फास्फोरस, 50 kg पोटास कह रहे हैं, इस रूप में तो आता नहीं है, किसान डालते हैं DAP और पोटास के रूप में और यूरिया के रूप में। तो हम ये भी बताते चले अपने किसान भाइयों को, आप देखते होंगे कि बोरी में लिखा रहता है यूरिया की बोरी में 45% नाइट्रोजन, यानी 100 kg अगर आप यूरिया डालेंगे तो 45 kg नाइट्रोजन मिलेगा। DAP के बोरा में देखेंगे तो 18 और 46 लिखा रहेगा, टोटल 64 भाग इसमें पोषक तत्व है, ये प्रचार भी करता है DAP वाला। तो 18% उसमें नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है, यानी 100 kg 50-50 kg का अगर 2 बोरा DAP हमारे किसान भाई देंगे तो उसको कितना मिलेगा फास्फोरस, 46 kg, और नाइट्रोजन मिलेगा 18 kg। क्लियर हो गया
1: जी।
0: तो अब 100 kg फास्फोरस देने के लिए आपको 108 kg देना पड़ेगा, 108 से 10 kg देना पड़ेगा, तब फास्फोरस मिलेगा। और जब 108 kg आप DAP दे देंगे तो 18 kg नहीं, 21-22 kg आपको यूरिया मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, तो उतना यूरिया आपको कम करना पड़ेगा। और जब 1 क्विंटल जब आप दे रहे हैं 100 kg यूरिया, तो आपको 45 kg मिल रहा है उसमें नाइट्रोजन, तो इसके मतलब 200 kg जब हम देंगे तब जाके आपको 90 kg मिलेगा। तो आपको 100 kg की ज़रूरत है, तो 200 kg पूरा न भी दें तो 185 kg के आसपास यूरिया देना पड़ेगा, 110 kg DAP देना पड़ेगा और करीब 85 से 90 kg पोटास देना होगा, क्योंकि पोटास में जो म्यूरेट ऑफ पोटास जो खाद आता है, जिसको पोटास किसान कहते हैं, उसमें 60% पोटास रहता है। तो आपको 85-87 kg जब देंगे पोटास तो 50 kg मिल जाएगा। DAP जी हमें जितना ज़रूरत है तो 110 kg के आसपास देना होगा, और यूरिया 100 kg देने के लिए, चूँकि 20 kg हमको मिल जा रहा है इससे, तो हमें उधर अब चाहिए अब 80 kg, तो 80 kg देने के लिए 180 kg के आसपास देना पड़ेगा हमें। तो ये थोड़ा गणना करना पड़ता है, हम लोग रफली बता दिए, एक्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1-2 kg आगे पीछे होगा, तो उतना से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये करना होगा। अब सब्जी की खेती हमारे किसान भाई करते हैं, तो सब्जी की खेती को हम लोग अनुशंसित करते हैं कि जब तक आप कंपोस्ट या FYM नहीं देंगे, आपकी बढ़िया चमक और अच्छी सब्जी नहीं होगी। तो ये हम लोग ज़्यादातर सब्जियों में कहते हैं कि 20 टन यानी 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से FYM या कंपोस्ट देना पड़ेगा। अब जो जैसे बोदी है, एक एक्सेप्शन गर्मा सब्जी में, इसमें ना ही नाइट्रोजन उतना देना है ना ही कंपोस्ट उतना देना है, 10 से 12 टन यानी 1000 से 1200 मतलब 100 से 120 क्विंटल अगर आप दे देते हैं, 10 से 12 टन अगर आप दे देते हैं कंपोस्ट FYM तो काफ़ी होगा। हाँ मैक्सिमम दे तो 15, उससे ज़्यादा नहीं, 15 टन से ज़्यादा नहीं देना होगा। अब दूसरी बात क्या हो रही है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा थोड़ी अलग हो जाती है।
2: तो एखन हमारे मन जानकारी करते रही गर्मी में सब्जी मन कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रबंध बताते रहे हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी, इनके से बातचीत करते रहे संजीव कुमार लाल।
3: तो सचे भाई एक संगे खेती बाड़ी कर बेरा तो हेल सिरा लक और बेरा हो गलक हमारी दुनिया युवा सभा कर, और फिर से सबकर स्वागत करी हमरे मन कार्यक्रम में, जितना भी नौजवान भाई बहन मन है, खास करके युवा मन कर, कारण है कि हमरे मन आज कर दिन में युवा सभा करीला। और देखो शशि भाई, युवा हमरे मन कर देश है, युवा देश भी कहल जाएला, और कहल जाएला नहीं कि कोई भी देश के आगे लेके जाएला तो युवा लेके जाएला, तो युवा देश ही हमरे मन कर सोच विचार भी नवा है, तो नवा जोश उमंग के साथ हमरे मन के काम करे कर दरकार है।
2: हाँ, और युवा कर मन संगे संगे सबके एक दूसरे से मिल के काम करे, अगर कोई काम के अकेले करत ही, और जहाँ अगर हमें 10 जन मिल के या एक समूह के रूप में या सब एक दूसरे से अगर मिल के करत ही तो बहुत बेहतर ढंग से वो काम के कर सकीले और आगे बढ़ सकीले, से लेके कुल से भी संबंध जो है मधुर बना के रखे के चाहिए।
3: हाँ ठीक कहा थी रुए, और मिल के रहले है हमरे मन कोई भी काम के आसानी से कर सकीला और बढ़िया से कर सकीला। और देखो हमरे मन छोटा छोटा बात में लड़ाई झगड़ा, चाहे हमरे मन में मत भिन्नता हो जाएला, कभी कभार झगड़ा बहुत आगे तक बढ़ जाएला और इकर से मामला बहुत बगड़ जाए जाएला तो आदमी मन में दूरी काफी बढ़ते जाएला। शशि भाई तो हमारे मन

0: के सबकर से मिलजुल के रहना जरूरी है, खास करके जब हमारे मन देखी लानी अगल बगल कर आदमी मन से हमारे मन के हमेशा मिल के रहे के चाहिए। कहल जा रहा कि सब सुख दुख में रो आदमी मन बहुत करीबी आदमी मन उमन के आवे में देरी
1: नहीं
0: लागे
1: लागे ला, लेकिन पड़ोसी है अपन अगल बगल का तो करना। गांव घर में भी देखब कि पहले कर बेरा में और आज कर बेरा में बहुत तरह का फर्क है कि जो पहले जो मधुरता है धीरे धीरे अब खटास होते जाते हैं। तो पहले वाला मधुरता के बनाए के रखे के काले कि पहले के बेरा में गांव घर में कभी देखत रही शादी ब्याह होत रहने तो कहूँ से बाहर से आदमी बुलाए की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई पड़ोसी बगल वाला है से कोई आधा काम के समरा देव थे मिल के सब पूरा गांव का आदमी जो है नगल बगल सब मिल के ही सब काम कर लो रहे
0: एकदम माने पैसा कर बचत हो जात रहे, समय कर बचत
1: हाँ,
0: हो जात रहे और
1: सब
0: काम भी बड़ा हंसी
1: हाँ,
0: खुशी हो जात रहे
1: सब एक दूसरे सब अपन आदमी बात करते करते ही करते करते सब जे भी खुशी है सब आराम से पार हो जाते रहे। नहीं देखो कि कोई बांस काटे गेला कोई लकड़ी ला रहा था कोई खाना बनाए में सहयोग करते हो कोई चार गो बैठ गए तो सब्जी बनाते हैं पूरी बनाते हैं। और एखन तो देखो का कहना आदमी कर जो मधुरता है कम होते जाते जते मेहमान आवे लोकर से बगरा तो काम करे वाला आदमी मन से
0: एकदम सही कहते आदमी आपन में बढ़ते जाते मतलब एकला होते जाते। तो भाई मदती हमरे मन के जे हमरे मन का अपन पहचान है से के आज भी हमरे मन के जिंदा रखे है उके छोड़े के नखे हमरे मन के। और देखो ठीक बट याद करत ही हम हो कि जब हमरे मन के घर में छाइन पहले छारत रहे नी तो सबके हमरे मन बोलात रहे मन मस्त मार के हमरे मन पचाइट खात रहे इतना बढ़िया रोपा लोभा बे
1: सब एक दूसरे का मदद करके काम निकल जाते रहे पते चलत रहे कि सुख में दुख में कोई चीज भी हो अलग मजा रहे।
0: तो भाई एकदम हमरे मन के पुराना दिन के याद करे के जैसन के अखन हमरे मन याद करके बड़ा रोमांचित हुआ थी बड़ा खुश हुआ थी। तो अपन पुराना जो परंपरा है संस्कृति है उके हमरे मन के बचाए के रखना बहुत जरूरी है। और संगे संगे शशि भाई यो हम बताए खोजिला कि आज देखो विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है और ये बहुत कह सकीला कि एक ठो ऐसा रोग है जेकर से जे भी पीड़ित है आज वो बहुत परेशान है मतलब उकर में रोग ऐसा हो नहीं कि खून कर कमी हो जाला उके अरे आनुवंशिक बीमारी है मतलब माए बाप से ही पसरे वाला बीमारी है। तो जैसे माए के अगर बाप के अगर ये बीमारी है तो उकर में छुआ में भी आ जाला और इकर होला कि लगातार मतलब खून इकर में चढ़ाई खोला और कह दाओ तो छुआ मन इकर शिकार भी हो जाए ना बहुत बार। तो ऐसा बीमारी है जेकर से आज हमरे मन के बाचिक बहुत जरूरी है। और संगे संगे हम तो कहब कि भाई हमरे मन के रक्तदान जरूर से जरूर करे के चाहिए शशि भाई एकर से अपन शरीर कर भी हमरे मन कर जे खून है लगातार बनते रहेला और नवा खून बनेला तो हमरे शरीर में ताजगी भी बनल रहेला। लेकिन कह दाओ देखीला कि भ्रांति भी है शशि भाई बहुत आदमी मन रहे ना खून दान करे से कहे ना कि नहीं नहीं हम के कमजोरी हो जाए चाहे हमार खून निकल जाए तो फिर हम नहीं बचब कह दाओ तो ऐसा भी आदमी सोच लेकिन रुके हम बताए खोजे ला कि हम अपन अपन बात बता थी कि एखन तक हम 13 धाव कर चुके और किसी तरह कर कोई समस्या नहीं और हम तो चाहे ला कि हमके भगवान के ना करे के को कैसन जरूरत पड़ जाए लेकिन हर समय हम तैयार रही ला शशि भाई
1: नहीं, बहुत बेस्ट बात।
0: और हर 3 महीना में हमरे मन कर सकीला ये माने डॉक्टर बटले भी कहल जाला कि हर 3 महीना में आदमी मन रक्तदान कर सके ना तो रक्तदान जरूर करूँ भाई हमर वास्ते भी और दूसर आदमी के जेके बहुत जरूरी है खून के से कर ले लिए बहुत जरूरी है। तो शशि भाई अब हमरे मन आगे भी बतियात रहब हमरे मन लेकिन चलू आगे कार्यक्रम की ओर करी ला
1: तो चलो सुनी लेगो नागपुरी लोकगीत विनीत कुमार संगी मन गावल।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शशि भाई, देखो हमरे मन तखन कहत रहनी कि हमरे कर देश युवा देश है, तो हमरे कर भूमिका भी बहुत बगड़ा होएला कि अपन देश के, अपन राज्य के, अपन गांव के कैसे हमरे मन आगे लेके चलू, कैसे प्रगति का डहर में हमरे मन की अगुवाई सकीला। देखो हर ठीना, मतलब ऐसा नखे कि पढ़ लिख गई तो खाली हमरे मन के सरकारिए नौकरी करे के, चाहे नौकरिए बटे जाए के, छोटा मोटा काम भी करके हमरे मन अपन गांव के, अपन समाज के आगे बढ़ा सकीला।
4: अपन संगे संगे अपन गांव कर और युवा मन के भी एक दूसरे से जोड़ के उके भी रोजगार दे सकीला। बहुत सारा काम है गाँव घर में
3: एकदम। तो देखो सबके आगे लेके, मैं खास करके समाज के अगर हमरे मन के आगे लेके चलना है, गांव के आगे लेके चलना है, तो हमरे मन कर भूमिका भी बहुत बड़का है। तो चलो इकरे बारे में हमरे मन जानकारी करत थी कि समाज कर प्रति युवा मन कर का भूमिका है, और इके बताते हैं डॉक्टर सुखदेव साहू।
5: सही, एक सामाजिक प्राणी कहल जा है। समाज में जन्म ले के भला बुरा कर्म करके समाज में ही मर मिट जाएना। समाज में अच्छा कर्म भर रह जाएला। समाज में एक दूसर का दुख दर्द में हाथ बटाएना उके समाज सेवी कहल जाएला। समाज कर सेवा चलते ही मरल का बाद भी मदर टेरेसा के संत कर उपाधि मिललक। वर्तमान समय में सामाजिक स्थिति बहुत तेजी से बदलत है। चारों बटे भौतिक और आर्थिक प्रगति नजर आवत थे। सुख सुविधा कर साधन दिन प्रतिदिन आविष्कार होवत है, मुदा आंतरिक दृष्टि से मनुष्य कर मन टूटते और बिखरते जाते। भारत देश पहले जगत गुरु कहलात रहे। मनुष्य कर इच्छा और कामना कर कोनो सीमा न खे। इसन स्थिति में समाज कर समरसता और सहयोग कर भावना जिंदा नहीं रह सकेला। सुख शांति और आनंद कर दर्शन नहीं हो सकेला। कुसंगति से युवा बर्बाद होना और सुसंगति से युवा विकास करना। अगर समाज कर युवा जाग जाबे तो समाज कर दशा और दिशा बदल के रही। भारत में 16 से 25 वर्ष कर युवा मनक संख्या 21.5 करोड़ है। इतना बड़ जनसंख्या सकारात्मक और रचनात्मक काम में लायक जाबे हल भारत के संसार का शिखर में पहुंचा सकेना। आज कर युवा मन के भारत का महापुरुष सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसन महान युवा क्रांतिकारी मन से शिक्षा लेक चाहिए और अपन जीवन में धारण करके समाज के सेवा करे चाहिए। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम कर महानायक मन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तातिया टोपे और मंगल पांडे युवा रहे। रानी लक्ष्मीबाई सेखन 26 साल कर रहे। देश कर आजादी खातिर झारखंड कर शहीद मन में ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, वीर बुद्धू भगत, शेख भिखारी, नीलांबर पीतांबर, चांद भैरव, सैकड़ों युवक फांसी के फंदा में चिढ़ गए। 1908 ईस्वी में स्वाधीनता यज्ञ कर बलिवेदी में शहीद होक वाला खुदीराम बोस मात्र 18 साल कर युवक रहे। युवक समाज का रीढ़ है। युवक मनक मन में शक्ति कर संचार होते रहेला। युवक मन के बने कर बिगड़े कर समय 12 से 20 साल तक रहे। इस समय में युवक कच्चा माटी और कच्चा काठी लखे रहें। समय कर सही सदुपयोग कर लेवें तो जीवन धन्य हो सकेल। समाज के प्रति युवा मन के ई लखे काम करे चाहिए। पहला, सामाजिक समरसता। समाज में हर जाति धर्म कर आदमी रहना, ऊंच नीच भुलाई के सबके एक समान के भाव से देखे चाहिए। समाज कर हर काम में युवा मन के बढ़ चढ़ के साथ देवे चाहिए। समाज कर काम के ईसन करे चाहिए कि दूसर समाज कर आदमी मन कर भी भला हो सकेला। समाज कर युवा मन के सामूहिक काम करे के चाहिए। समूह कर काम आसान होवेला। समूह कर काम करे में हर आदमी से राय सलाह लेवे के चाहिए। समाज में सहिया और मदद कर संस्कृति के व्यवहार में लाने के चाहिए। केकरो धान रोपे के है, मरखी में काठी फारे के है, शादी ब्याह में खाना पकाए और खियाए के है, ये सब काम सामूहिक रूप से युवा मन के करे के चाहिए। समाज का विकास लेकिन बुजुर्ग मन कर राय भी लेवे के चाहिए। शिक्षा समाज कर हर आदमी के मिले के चाहिए। साहित्य समाज कर दर्पण है के शिक्षा कर अभाव में समाज कर कल्पना नहीं कर सकीला। युवा वर्ग गांव कर छुआ मन के नैतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, जीवन जीवे कर शिक्षा देवे के चाहिए। गरीबी कर चलते पढ़े के नहीं पारत है, उसन छुआ मन के पढ़ाई चाहिए। स्कूल नहीं जाए खोजत है, उसन छुआ मन कर माए बाप के शिक्षा कर महत्व के बताए के चाहिए। बूढ़ा मन के भी रात्रि पाठशाला कर पाठ पढ़ाए के चाहिए। स्कूली शिक्षा कर साथ स्वावलंबन कर पाठ भी पढ़ाए के चाहिए, ताकि अपन रोजगार कुटीर उद्योग लघु उद्योग कर रूप में कर सकें और अपन जीवन के संवार सकें। गांव कर छुआ मन के छोटे छोटे कहानी कर माध्यम से बाल संस्कार शाला चलाए के चाहिए। कहानी के अपन भाषा में बताए के चाहिए। खेल और संगीत कर भी ध्यान देवे के चाहिए। स्वस्थ समाज कर हर आदमी के रहे के चाहिए। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन रही तबे सब समाज का निर्माण हो सकेला। अच्छा खान पान, रहन सहन, आचार विचार से आदमी कर तन और मन स्वस्थ रह सकेल। जंग फूड से छुआ मन के बचाए के चाहिए। कहल भी जाहे जैसन खाबे अन्न उसन बनी मन। गांव कर युवा मन के जड़ी बूटी कर ज्ञान सीखे के चाहिए। झारखंड कर कोना कोना में दवाई बीरो भरल है, उकर गुण के जाने के चाहिए। इके पारंपरिक इलाज कहल जाएला। युवा मन के प्रारंभिक चिकित्सा कर सामान रोई मलहम पट्टी राखे के चाहिए, ताकि तुरंत इलाज करके अस्पताल पहुँचाए के चाहिए। गर्भवती महिला मन के टीकाकरण कर बात बताए के चाहिए और अस्पताल में ही प्रसव ले भेजे के चाहिए। शरीर से इतना श्रम करे के चाहिए कि पसीना निकले के चाहिए। छोटा मोटा बीमारी पसीना से निकल जाएला और आदमी निरोग रहेना। समाज के स्वस्थ राखे में युवा मन के आगे आवे के चाहिए। प्राचीन काल में मनुष्य मन जोग व्यायाम करके 100 वर्ष तक जीवत रहत रहें। भारत देश कृषि प्रधान देश है। जनसंख्या कर अधिक भाग गांव में निवास करें और खेती बाड़ी करेना। जनसंख्या बढ़ते जाते मुदा खेत दाड़ कम होते जाते। सेले समाज कर युवा मन के चाहिए कि कृषि विश्वविद्यालय से उन्नत खेती के प्रशिक्षण लेके गांव कर किसान मन के पैदावार बढ़ाए वाला खेती करवाए चाहिए। सिंचाई कर व्यवस्था ले युवा मन कुआं कर निर्माण, डोभा कर निर्माण आसानी से कर सकें। अगर 5-5 युवा मन एक एक दिन में 1 फीट गढ़ा कोड़बें, हल 30 दिन में 1 कुआं का निर्माण हो सकेला। नदी नाला कर बहता पानी के संरक्षण करे कर उपाय करे चाहिए और कृषि कार्य में लगाए चाहिए। खेती कर साथ साथ पेड़ लगाई भी चाहिए, ताकि पर्यावरण का रक्षा और वर्षा हवे कर शक्ति मिल सके। स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ अभियान प्रधानमंत्री कर मूल मंत्र है। समाज कर युवा मन के टोली बनाए के सामूहिक सफाई करे के चाहिए और सफाई कर महत्व के बताए के चाहिए। गांव कर हर आदमी अपन अपन घर कर बाहरे साफ रखबे तो गंदगी कर नाम नहीं रही। गंदगी नहीं रही तो तन मन साफ रही। साफ सुथरा ठाव में ही देवता कर वास होवेला। तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ेला, जे मनुष्य इकरे से जिंदा रहेना। समाज कर युवा मन के गांव घर और जंगल की सुरक्षा भी करे के चाहिए। अंधविश्वास समाज कर कोड़ है के हर दिन कर अखबार में टीवी में देखे के मिलेला कि डाइन बिसाही कर नाम से कतना मार काट होत है, वैधमती समाज के लूटत है। अंधविश्वास के मिटाई के लिए युवा मन के नुक्कड़ नाटक कर माध्यम से गीत कर माध्यम से शिक्षा देवे के चाहिए। डाइन बिसाही समाज कर कमजोर गरीब विधवा मन के धरेना, बड़ धनी मानी मन के नहीं धरेन। कहल जाहे

0: रजाक और माय के केव डाय नहीं कहन अंधविश्वास के मेटाय के लिए युवा मन के आगे आवे चाहिए। आठवां है रोजगार कर उपाय। समाज कर युवा मन के सरकारी नौकरी कर भरोसा में नहीं रहक चाहिए, स्वरोजगार कर उपाय करक चाहिए। मधुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन और गाय पालन कर प्रशिक्षण ले के समाज कर युवा मन के प्रशिक्षण देक चाहिए। खुखड़ी उपजाई, पापड़, अचार, मोमबत्ती बनाई, सिलाई बुनाई करे, तबे बेरोजगारी दूर हो सकेला और समाज कर मुख्य धारा में जुटेक चाहिए। समाज में ही उचित अनुचित कर फैसला करेक चाहिए। कोर्ट कचहरी कर चक्कर में नहीं पड़ेक चाहिए, इकर से समय और पैसा कर बर्बादी है। समाज में सज्जा नहीं दे के उके सुधरे कर मौका देवेक चाहिए। ई लखे समाज कर हर समस्या कर समाधान युवा मन के समाज में ही करेक चाहिए, तबे राष्ट्र और देश का विकास हो सकेला।
1: तो ये नागपुरी वार्ता हमरे सुनत रही, समाज कर प्रति युवा मनक भूमिका बतात रहे डॉक्टर सुखदेव साहब।
2: शशि भाई बड़ा नगद जानकारी होलक और जितना भी सुनोया भाई बहन मन है उमन भी बात के जानबे गुनबे कि भाई हमरे मन कर प्रति जे भी हमरे मन कर है भूमिका अपन देश कर प्रति समाज कर प्रति उके हमरे मन के जाने के है बुझे के है और उकर प्रति हमरे मन के जवाबदेह भी होए के है। तो एकरे संगे आप चले कर भी बेरा हुई।
1: हाँ, हाँ।,
2: हाँ तो जाते जाते बताती कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर। लगे शशि भाई चले चाहिए।
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं तुरंत।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। झारखंड भाजपा ने दी बधाई। हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। झामुमो ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच तेज। उच्च स्तरीय समिति ने की दस्तावेजों की गहन समीक्षा। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी में ओलावृष्टि की चेतावनी। और रांची में हॉकी इंडिया आयोजित करेगा स्टेट लेवल कोर्स। अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अधिकारी के चयन की औपचारिक घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: शुभेंदु अधिकारी के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर झारखंड भाजपा ने बधाई दी है। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। राज्य में बिजली और पानी एवं संकट को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार को केंद्र से पेयजल सुधार के लिए मिले 12,700 करोड़

0: करोड़ रुपए का बंदरबांट कर लिया गया है। मौके पर मौजूद सांसद मनीष जायसवाल ने भी हजारीबाग में बिजली की बदहाल स्थिति और पानी के हाहाकार पर गहरी चिंता जताई।
1: इस शहर में बिजली है और ना पानी का ठीक से व्यवस्था है। पहले अगर 15-20 हजार घरों में पानी आता था तो अब वो घट करके 8-9 हजार ही बच गया। दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा इस प्रकार से बिजली रह रही है। जिस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के आत्मा को जगाना चाहती है कि जो बेसिक सुविधा है बिजली पानी जो बेसिक अधिकार है लोगों का वो दो, इसको जगाने के लिए आज का आंदोलन कर रही है।
0: उधर रामगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने कोर्ट मोड़ से समाहरणालय तक विरोध मार्च निकाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। जमशेदपुर में महंगाई के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए। श्री सारंगी ने दावा किया कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाला महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है।
2: गठबंधन के सभी दलों को साथ में लेकर सरकार काम कर रही है समन्वय के साथ, तो निश्चित रूप से असम के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लोगों का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में भी हम बहुत मजबूती के साथ वहाँ संगठन को खड़ा करेंगे और चुनाव में भी भाग लेंगे।
0: गुड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर समेत पूरा संताल परगना क्षेत्र विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सांसद ने क्षेत्र में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नए पावर ग्रिड, बेहतर रेल कनेक्टिविटी और वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों से आधारभूत ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कल से देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। आर्मी हॉस्पिटल और अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति आज बोकारो पहुंची। समिति के अध्यक्ष और राज्य उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अमिताभ कौशल ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। डॉ. कौशल ने बताया कि घोटाले की जड़ें गहरी हैं और इसकी बिंदुवार जांच की जा रही है।
4: हमारे बेंचमार्क हैं वो ट्रेजरी कोड है। ट्रेजरी कोड जो हमारे बेंचमार्क हैं वो ट्रेजरी कोड है, झारखंड फाइनेंशियल रूल्स हैं और पुलिस मैनुअल, ये 3 चीजें हैं। तो उसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट के समय समय पर निर्गत इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एग्जामिन करके क्लियर फाइंडिंग्स पे पहुंचे।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगामी 11 और 12 मई को रांची में 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के जनजातीय छात्रों को राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा। आज रांची में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। विश्व रेडक्रॉस एंड रेड क्रिसेंट

0: दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदेशवासियों और संस्था के स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। राजभवन से जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस से जुड़े कार्यकर्ताओं का योगदान समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। राजधानी रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। मौके पर राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने बढ़ते जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
1: हम नई पद्धति से जिस जगह और जगह जो ये पहाड़ी इलाके में पानी का रोकने का जो टेक्निक सभी अपनाए हैं, उस टेक्निक को हम लोग लेकर के झारखंड में भी ये करेंगे। अभी हम लोग झारखंड में पीरस्टाण में एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें 120 तालाब में हम लोग पानी खेत में तो देंगे ही और तालाब में ही स्टॉक करके रखेंगे।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार 14 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होगी। कल रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। हॉकी इंडिया द्वारा आगामी 22 से 24 मई तक रांची में अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए स्टेट लेवल कोर्स का आयोजन किया जाएगा। ईस्ट जोन के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस कोर्स के लिए खिलाड़ियों के पास नेशनल चैंपियनशिप में खेलने और ऑफिशिएटिंग का काम से कम 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। हॉकी इंडिया ने इच्छुक उम्मीदवारों से 10 मई तक ऑनलाइन नामांकन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। झारखंड भाजपा ने दी बधाई। हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। झामुमो ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच तेज। उच्च स्तरीय समिति ने की दस्तावेजों की गहन समीक्षा। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी में ओलावृष्टि की चेतावनी। और रांची में हॉकी इंडिया आयोजित करेगा स्टेट लेवल कोर्स। अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद शहर में फुटपाथ दुकानों और ठेले खोमचों की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने कोर्ट रोड से डीआरएम चौक तक के फुटपाथ दुकानदारों को शहर में निर्मित वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में लॉटरी के माध्यम से 117 दुकानदारों को दुकान आवंटित की गई। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि वेंडिंग जोन में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
2: रणधीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट रोड तक में जितने भी साइड में जो दुकानें लग रही थी वहाँ पे जाम की समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा वेंडिंग जोन बना हुआ है वहाँ पर इन सभी लोगों को एक लॉटरी के माध्यम से दुकान वहाँ आवंटन कराया जाए और उसी प्रोसेस में हम लोग वहाँ पे 177 दुकान जो है हम लोग वहाँ पे आवंटित करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और सड़क भी बन रही है।
1: वहीं नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहर के कई और स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां भविष्य में नए वेंडिंग जोन बनाए जा सकें।
3: एक साल से ऊपर हो चुका है लेकिन वहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। उसके दो रीजन थे, एक तो अप्रोच रोड नहीं थी, कहीं से भी अप्रोच नहीं रोड नहीं थी, शेड बना रखा था और शेड के कारण जो रोड जाती थी वो ब्लॉक हो रखी थी, तो वो रोड बनना चालू हो गई है जो जिला स्तर से बनवाई जा रही है और काफी चौड़ी रोड है।

0: और सामने तो ईवीएम वेयर हाउस भी है, तो इसलिए उस रोड का इम्पोर्टेंस भी बहुत है, इसलिए काफी चौड़ी और काफी अच्छी रोड बनाई जा रही है अप्रोच रोड। आने वाले एक वीक के अंदर या दो वीक के अंदर जैसा भी एक बार हम अपडेट ले लेंगे वो रोड कम्प्लीट हो जाएगी, और इसलिए वहाँ पर जो एक इशू था कि कस्टमर नहीं जा पाते थे वो वहाँ पर जाएंगे।
1: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीपीएल कोटे में एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर वेबसाइट rte.dhanbad.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदक को संबंधित वार्ड पार्षद या पंचायत के मुखिया से अपने घर का पता सत्यापित कराना अनिवार्य होगा, साथ ही घर के बाहर खींची गई जियो टैग तस्वीर लोकेशन के साथ अपलोड करनी होगी। 30 मई 2026 तक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीपीएल कोटा में एडमिशन के लिए अभिभावक को सही जानकारी देने से संबंधित एफिडेविट भी जमा करना होगा। गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंदुआडी में गैस रिसाव की वजह से क्षतिग्रस्त हाईवे और ट्रैफिक डाइवर्जन इन दिनों राजनीति का नया केंद्र बिंदु बना हुआ है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने इस मुद्दे को लेकर कल से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कई बार इस मुद्दे को राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के समक्ष उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
2: केंदुआ, छाताटाड़, लोयाबाद, पुटकी, थोक विक्रेता सभी हमारे सब व्यवसायी साथी लोग आए थे और सब लोगों से बातचीत हुई है। पिछले बार जो हम लोगों ने निश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम किया था और भ्रम फैला के जिला प्रशासन के आग्रह पर उसने हम लोग वहां से स्थगित किए थे उसको, लेकिन उसका कोई फलाफल निकला नहीं। तो एक सांकेतिक रूप में यह प्रशासन को मैसेज देने के लिए, धनबाद के लाइफ लाइन जो है हमारा NH, यहाँ इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है और पूरा धनबाद से लेकर के सब लोग का काफी परेशानी हो रही उससे, और 24 घंटे का अनशन पर हम बैठेंगे। उसमें हमारे जितने व्यवसायी भाई हैं सब लोग पांचों जगह के और धनबाद के लोग भी इसमें हमको सहयोग भी करेंगे।
1: विधायक के आंदोलन को स्थानीय व्यापारियों का भी साथ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सांसद समेत अन्य नेताओं ने भी इस रास्ते से आवागमन पुनर्बहाल करने को लेकर आवाज उठाई है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
3: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा।

Samatiri samatele samangedarometan.

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सहिया रेडियो कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। आज के इस अंक में हम बात करेंगे गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य का पहिया बनकर लगन से काम करने वाली सहिया बहनों की, जिनके काम के महत्व और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम इस विषय पर कई जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें हमें सहयोग करेंगी हमारी पूर्णिमा बहन। तो जोहार पूर्णिमा बहन।
1: आपको भी जोहार चंपा मुनि दीदी। हमारे श्रोता भाई बहन के लिए यह जानना जरूरी है कि राज्य भर की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने और सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में सहिया बहनें की अहम भूमिका होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने काम और जिम्मेदारी निभाने के दौरान सहियाएं किसी दुर्घटना, अपंगता या मौत का शिकार भी हो जाती है, जिससे उनके आश्रितों को सामाजिक व आर्थिक तौर पर अनेक तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही सरकार सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत सहियाओं और सहिया साथी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जरिए आर्थिक सुरक्षा मुहैया करा रही है।
0: पूर्णिमा बहन, सच में ये बड़ी राहत की बात है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सहिया सहायता निधि के जरिए भी अपंगता या मौत होने की सूरत में सहिया और उनके परिवार को कई तरह से आर्थिक सुरक्षा व सहायता दी जा रही है। इसमें सहिया, सहिया साथी, बीटीटी और एसटीटी को लाभुकों की श्रेणी में रखा गया है।
1: चंपा मुनि दीदी, हमें लगता है कि सहिया बहनों को मिलने वाले सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के बारे में अपने श्रोता भाई बहन को और भी अधिक जानकारियों से अवगत कराने के लिए हमें सहिया कार्यक्रम की राज्य समन्वयक अक्के मिंजी से जरूर मिलना चाहिए। उनसे मिलने वाली जानकारी हमारे श्रोताओं के काम आएगी।
0: सही कह रही हैं बहन। चलिए बिना देर किए अक्के मिंजी से मिल ही लेते हैं।
1: जोहार अक्के दीदी, लगता है कि हम सही टाइम पर पहुंचे हैं कि आप फुर्सत पे मिल गए। एक जरूरी काम था आपसे।
2: कैसी हो पूर्णिमा, सब खैरियत तो है ना? बैठकर बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए।
1: अक्के दीदी, आज हम राज्य भर की सहिया बहनों को सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का लाभ दिए जाने के विषय में सहिया रेडियो के श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं। इसी बारे में आपसे और भी विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, ताकि वे जानकारियां सीधे हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। साथ ही कार्यक्रम सुनने वाली सहिया बहनें भी इसका लाभ उठा पाएं।
2: वाह पूर्णिमा, तुम सचमुच बहुत नेक मकसद से आई हो। जो भी जानना चाहो बेझिझक पूछ लो।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता भाई बहन को यह जानकारी दे कि राज्य भर में काम कर रही सहिया बहनों को किस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है और यह लाभ किसकी ओर से मिलता है।
2: चूंकि सहिया ग्राम सभा के द्वारा चयनित एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो ग्राम सभा के अंतर्गत सभी लोगों के लिए कार्य करती है और उसको कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि है और उसको बहुत बार अपने घर से निकल करके अस्पतालों में जाना होता है, जिला मुख्यालय में आना होता है। तो ऐसे समय में बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। कुछ NHM के द्वारा प्रावधान है, जिसे हम सहिया सहायता निधि या कॉर्पस फंड कहते हैं, और कुछ जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और फिर है जिसमें सहिया स्वैच्छिक होकर भी पार्टिसिपेट करती है, एक है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। तो इन सारे जो सुरक्षा कवच हैं उनसे सहियाओं को लैस किया गया है ताकि वो बेहतर रूप से सहिया के कार्य कर सकें।
1: अब आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर किन हालातों में सहियाओं को सहिया सहायता निधि से आर्थिक सहायता मिलती है और कितनी मिलती है?
2: सहिया जब कार्य के दौरान सहिया की मृत्यु होती है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पल्स पोलियो के लिए सहिया डोर टू डोर विजिट करके पोलियो ड्रॉप पिला रही है और उसी समय कार्य करते दौरान उसका हृदय गति रुकता है और उसकी मृत्यु होती है, तो गतिविधियों को करते हुए कार्य के दौरान अगर सहिया की मृत्यु हुई तो सहिया सहायता निधि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा प्रदत्त है उससे 25,000 रुपये उसके आश्रितों को, उसके परिवार के सदस्यों को 3 दिनों के अंदर मिल जाता है। और कोई सहिया लंबी बीमारी के बाद उसकी मृत्यु हुई या काम नहीं कर रही थी और उसकी मृत्यु हुई तो उसे, उसके परिवार के सदस्यों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कोई सहिया अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका अगर गोल्डन कार्ड नहीं है, ऐसी परिस्थिति में उसके लिए एक मुश्त 25,000 रुपये की सुविधा है। कार्य के दौरान बहुत बार सहियाओं की अपंगता हो जाती है, जैसे हमारी एक सहिया बहन का पैर कट गया जब वो एक कार्यक्रम से लौट रही थी और एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसी बहनों को भी परमानेंट अपंगता में 25,000 और पार्शियल अपंगता में 50,000 रुपये का प्रावधान है। इसके साथ साथ अगर कोई सहिया आगे की पढ़ाई करना चाहती है तो उसके लिए एक मुश्त प्रोत्साहन के रूप में स्कॉलरशिप राशि उसके शिक्षण संस्थान में उसके फीस के रूप में 50,000 रुपये तक की सुविधा दी जाती है। और कोई सहिया अगर 60 साल के बाद अपना कार्य छोड़ना चाहती है या वो पिछले 10 साल तक अपना सेवा दी है और स्वेच्छा से इसे छोड़ना चाहती है तो उसे एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।
1: हमारे श्रोताओं को यह भी बताए, यदि जरूरत पड़ जाए तो सहिया बहनों को सहिया सहायता निधि से लाभ लेने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
2: इसके लिए जैसे कोई सहिया की मृत्यु हुई तो तुरंत उसके बगल के गांव की सहिया या सहिया साथी बहने उसके परिवार के सदस्यों का पासबुक का प्रथम पेज और उसके जिसमें की सारी विवरणी रहती है, उसके साथ आधार का जेरोक्स उस व्यक्ति का जो उसका आश्रित है, उसके साथ जो अपने पंचायत में हमारे PRI मेंबर्स हैं उनका एक पत्र कि ये सहिया की मृत्यु हो गई और हो सके तो मृत्यु प्रमाण पत्र, इन चीज़ों के साथ में जब चीज़ें जमा की जाती हैं डॉक्यूमेंट तो जिला मुख्यालय से सिविल सर्जन के माध्यम से उनको प्रोत्साहन राशि से जो निधि मिलनी है, सही सहायता निधि से जो निधि मिलनी है, पैसा मिलना है, वो उन्हें दिया जाता है। या कोई सहिया अगर आगे की पढ़ाई कर रही है तो अपने जो संस्थान है उसका प्रॉपर सभी दस्तावेज उसे जमा करना है तो उसे राज्य मुख्यालय से ये राशि दी जाती है।
1: सामाजिक सुरक्षा लाभ की बात करें तो इसके अंतर्गत सहियाओं को किन बीमा योजनाओं का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है और इससे उन्हें क्या फायदे होंगे?
2: पहला तो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें कि सरकार के द्वारा प्रत्येक सहियाओं का 20 रुपया उनका प्रीमियम भरा जाता है और यदि उनकी मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को 2 लाख रुपये का लाभ मिलता है। दूसरी जो योजना है सुरक्षा के लिए वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत जो प्रीमियम सरकार प्रत्येक सहियाओं के लिए लगभग 450 रुपये भरती है हर एक वर्ष, और इसमें यदि किसी सहिया का एक्सीडेंट होता है तो 2 लाख रुपये तक की राशि मिलती है या किसी की मृत्यु होती है तो भी 2 लाख रुपये तक की राशि उसके आश्रितों को मिलती है। जो तीसरा योजना है जिसको हम लोगों ने सहियाओं के लिए ओपन छोड़ा है, कि वो भी इसका लाभ उठा सकें, वो है प्रधानमंत्री पेंशन योजना, जिसमें सहिया को खुद प्रीमियम भरना होता है और 60 साल होने के बाद उन्हें जितना वो प्रीमियम देते हैं उतना ही सरकार उनके लिए पैसा देती है, और 60 साल होने के बाद ये उनके लिए पेंशन योजना के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार हम तीन जो सरकार की विभिन्न सुरक्षा योजनाएं हैं उनसे सहियाओं को हम लोगों ने सहायता प्रदान किया है।
1: यदि कोई सहिया बहन नई शिक्षा के जरिए अपना भविष्य संवारना व आगे बढ़ना चाहे तो क्या इसके लिए भी सरकारी स्तर पर कोई प्रावधान है?
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ऐसी सहियाओं के शिक्षण संस्थान में 50,000 रुपये तक की सहयोग राशि प्रदान की जाती है ताकि सहिया अच्छे से अपनी पढ़ाई आगे कर सकें।
1: एक जरूरी सवाल यह भी है कि यदि कोई सहिया 60 वर्ष की हो और काम करने में असमर्थ होने पर स्वेच्छा से पद त्याग दे तो उन्हें सहिया कैश प्रोत्साहन राशि के रूप में कितनी राशि मिलती है और उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है?
2: यदि कोई सहिया 60 वर्ष की हो गई है और उसे पद त्याग करना है तो अपना त्याग पत्र ग्राम सभा में सूचित करते हुए उचित माध्यम से सिविल सर्जन तक पहुंचवाती हैं, बीटीटी और एमओआईसी के माध्यम से, और डीपीसी के सहयोग से उस सहिया को कैश प्रोत्साहन राशि 20,000 का सहयोग दिया जाता है और उसके रिटायरमेंट का एक अच्छा सा आयोजन करके उसे कैश राशि दे करके विदा किया जाता है।
1: अकय मिंज जी, आपने सच में राज्य भर की सहियाओं को दिए जाने वाले सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के बारे में बहुत उपयोगी जानकारियां दी हैं, जो हमारे सहिया बहनों के काम आएगी। साथ ही हमारे श्रोताओं को भी यह विषय में गहरी जानकारी मिल गई। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत खुशी हो रही है पूर्णिमा बहन कि हमारी सहिया बहनें सामाजिक आर्थिक रूप से सुरक्षित और मजबूत बन रही हैं। इस सुरक्षा कवच से अब ना सहियाओं को और ना उनके आश्रितों को भविष्य के जोखिमों की चिंता सताएगी।
1: बिल्कुल चंपा मुनि, हमारे सहिया बहनों से जुड़ी एक बढ़िया बात ये भी है कि गर्भवती महिलाओं के साथ उनके सास या परिवार वालों को बुलाकर प्रसव काल की समस्याओं, प्रसव पूर्व तैयारी, गर्भवती महिला की देखभाल और उसके खान पान के बारे में जानकारी देने के लिए सहियाओं के सहयोग से जो सास बहु सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसमें हर सम्मेलन पर सहिया बहनों को 100 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है।
0: पूर्णिमा बहन, मेहनत का फल मीठा ही होता है। आर्थिक प्रोत्साहन मिलने पर काम के प्रति लगन भी बढ़ता है और उत्साह भी।
1: अब विदा लेने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं।
0: प्यारे श्रोता भाई बहन, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत।
1: जोहार।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सैया। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म यस बॉस के इस गीत के साथ। गायक हैं अभिजीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रोजा से, संगीत है ए आर रहमान का और बोल हैं एसपी बालसुब्रमण्यम के।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म रंग से, गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, संगीत नदीम श्रवण का है और बोल हैं समीर के।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ध्यान सरकार के गठन पर केंद्रित हो गया है और वही है आज हमारी चर्चा का विषय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, राजनीतिक गतिविधियां और चुनौतियां। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और संचिता गुहा और भाजपा प्रवक्ता केया घोष। आप सबका आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। चलिए सुनते हैं गृहमंत्री ने क्या कहा।
5: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
2: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी, जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। क्या जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
4: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस पश्चिम बंगाल के आम जनगण, उनका जनता ने इस बार तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है, जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी है, राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेकर घोटाला बोलिए, तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है
2: जी।
4: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ करना
2: जी। तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
3: अनुभव जी, आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला जिसका एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी
2: जी।
3: पिछले चुनाव से पहले आए थे और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया और इस बार दोबारा भवानीपुर में, दक्षिण कलकत्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है उसको मुकाबला करना, आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह घटना घटी
2: जी,
3: उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है, ये साइकिल ऑफ

0: पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है, खास करके पहले वामपंथी सरकार में था, इसके बाद में अभी तृणमूल के एए में भी एक प्रकार से हथियार बन गया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चल रहा था मामला, केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव बिना भय सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की जिसकी वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए, पहली बात जो एसआईआर को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से जितनी फर्जी वोटर्स घोस्ट वोटर्स भी निकल गए, पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
1: संचिता जी आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में इनके पक्ष में काम कर रहे हैं?
2: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है वो दो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
1: जी,
2: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है। जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बहुत ही, ये 15 साल में पहली बार नहीं 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। किनको वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है, पर वोट दे सकते हैं सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गया है। वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे वो तो कभी पकड़ा नहीं गए, तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी, लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, अप्रैल 2025 में जो वायलेंस हुआ, दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री, वो भी लोग भूले नहीं है। वकफ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं वो कभी हम सोच भी नहीं कर सकते थे। और ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे, ये अच्छा नहीं लगा
1: जी, जी।
2: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, और इस बार का वोट उसके खिलाफ है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है।
1: और इससे पहले कि कार्यक्रम में आगे बढ़ें, चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा।
3: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी, सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
1: मैं केया जी से अगला अपना सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा?
4: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं, इसके पहले 3.5 दशक का मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जब सारा देश आगे बढ़ रहा था हम बंगाली हम लोग पीछे जा रहे थे, तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे, वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति देके गए हैं, पहला बात। दूसरी बात यह कि 45 दिन के अंदर जो 7th पे कमीशन पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनका डीए इतने सालों से पेंडिंग है। ममता बनर्जी जी वो जनता के पैसा, टैक्स के पैसा खर्च करके वो डीए बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर जगह चली गई, तो ये हमारा वादा है ये पूरा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है, वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा, तो वो हमको वापस लाना है। हमारा बंगाल के जो टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है, जीडीपी है, बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया, तो चुनौती तो बहुत सारे हैं और एक दिन में तो नहीं होगा ये, जो कोई एक महीना भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो हम एक एक कदम

0: हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोलते गए हैं कि डबल इंजन की सरकार, और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूव जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है कि पश्चिम बंगाल के जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी।
1: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी?
2: बिल्कुल अनुभव जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा
1: जी,
2: यानी गुड गवर्नेंस। और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है, पीएम आवास योजना हो, आपके जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम को जो ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, या आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाले थे ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा। अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखिए, एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई ये नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कट बनी होगी। देखिए, पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय 34 ईयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़ी थी, सबको पता है। उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश किए, तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर मैंडेट मिली, ममता ने चीजों को और बिगाड़ा। और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए, इसलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चीजों पर एक रोक लगेगी, जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री की छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार पुलिस कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे इलेक्शन के लिए। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कोई कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उस पर आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है।
1: संचिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधे से भी कम है, फिर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
3: देखिए, ममता बनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रही है, जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, और जो वो बोल रही है कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहे हैं लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो तो बीजेपी की बात है, और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में, जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी, वो सब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका ने उनको हटा दिया, उन्होंने सारे जो ऑयल वेल था, तेल की खनी, आग जला दिए, तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही। तो ममता बनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है।
1: शेखर, इसकी जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
2: देखिए, बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है। पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोनार बांग्ला का, आज उस सपना को साकार करने में पहला कदम है ये।
1: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और किया घोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
3: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
5: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को है। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।

0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रूपये और 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस वीसी के आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

गर्दी के ग्रुपों के खिलाफ उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात शेयर किया के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पतन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए त्रिवेणी हेलीपैड से किलोमीटर तवील मेगा रोड मंदिर में कुंभ अभिषेक ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार के रोज नई दिल्ली में मुमकिना सैलाब और गर्मी की लहर की सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क की तैयारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। पर मरकूज कुदरती आफात का बंदोबस्त और कुदरती आफात से मुकाबला करने वाले भारत की तामीर के तई हुकूमत के मुसम्मम अहद की अक्कासी करता है। मीटिंग के दौरान जनाब शाह मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारी, पेश की वार्निंग निजाम, वसाइल की फरोग और बैन एजेंसी तालमेल का जायजा लेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जान जाया न हो और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुंचे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने इत्तला दी है कि एयर इंडिया की परवाज AL-171 के अलमनाक हादसे की वो है कि उसे एक माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आज गांधीनगर में एजेंसी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए छानबीन किए जा रहे मामलों से मुतालिक 10 से 15 जेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए कम से कम एक खसूसी अदालत कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें एक माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अजखुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियाद। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलों के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नजर एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। जराए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलों से मुतालिक बदलती ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC देही तरक्की इन वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। विषयों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन से मुताल्लिक खिदमात शहरियों के साथ फीस में सहूलत फराहम करेंगे जिससे बैंकों को कर्जों की मंजूरी और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने की तश्कील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की जमीनी मौसरियत का जायजा लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी करते हुए हाईकोर्ट की जानिब से जस्टिस GS कुलकर्णी और अद्वे सेचना पर मुश्तमिल बेंच ने मुंबई में झोपड़पट्टी की बहाली और शहरी की और कहा कि यह कानून खवातीन के कौमी कमीशन NCW ने संगीन जंसी जराइम के मामलों में तेज रफ्तार अदालती कार्रवाई, सख्त निगरानी और पैरोल पर पाबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। कमीशन ने अपने एक बयान में खवातीन पेरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तश्वीश का इजहार किया। भारत की सिमरनजीत

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Current Affairs. Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we'll be talking about Somnath, Bharat's invincible spirit. To talk about Somnath and Bharat's unconquerable spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity, I'm joined by two distinguished guests, Padmashree Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience. Attacked, rebuilt, and revived time and again, its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography, and that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. तो पहला सवाल हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी से. पांड्या जी, सोमनाथ को अक्सर लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की पहचान भी मानते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है.
1: देखिए, नरेंद्र मोदी जी इतिहास बोध के आदमी हैं, बरसों से है, आज से नहीं. और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं. उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है, उन्होंने लिखा भी है, हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण, इस पर आधारित है. बहुत से विनाश आए, आक्रमण आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन पुनः एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 50 बार हमने पुनः निर्माण किया. कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या, पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
2: जी,
1: 5,000 साल पहले का है. 5,000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, चारों बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया. सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर, केवल राजाओं ने नहीं, लोगों ने भी. मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ. ईस्वी सन 1400 तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, लोग सब इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से उनका पुनर्निर्माण किया. ये सोमनाथ की बात है
2: जी.
1: तो विनाश से निर्माण, कितने पुनरोद्धार हुए, बहुत से हुए. एक दो चार उदाहरण हम दें तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण किया, राजा भोज ने निर्माण किया, राजा कुमार पाल ने किया, भीमदेव ने किया, पाशुपत आचार्य त्रिपुरांतक ने किया, महिपाल देव ने किया. एक बार तो जैन और पाशुपत दोनों, शैव दोनों मिलकर किया. तो इसका मतलब है कि ये जो महारानी अहिल्याबाई ने भी किया, इस परंपरा की कड़ी

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनहरी यादें। सुनहरी यादें कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं चंद फिल्मी नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म परिचय के इस गीत के साथ। गायक हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह। बोल गुलजार के हैं संगीत आर डी बर्मन का।

फिल्म परिचय के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म दूरियां से, इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: चैट जीपीटी सी
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म इजाजत से।

फिल्म इजाजत के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। ये गीत है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। इसे गाया है अलका याग्निक ने, संगीत नदीम श्रवण का है और बोल हैं समीर के।

आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सितार वादन, कलाकार है निशात खान। आलाप और गत तीन ताल में निबद्ध है राग चांदनी कल्याण। तो प्रस्तुत है निशात खान का सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निशात खान का सितार वादन, राग चांदनी कल्याण, आलाप और गत तीन ताल में निबद्ध थी। हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
1: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination, but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Shubhendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
1: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं.
2: Mr. Shah expressed gratitude to the people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations of the people of Bengal have placed on them and the mandate that they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Shubhendu Adhikari said, Whatever guarantees have been announced by Prime Minister Narendra Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming in that the swearing-in ceremony, which was to take place tomorrow, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government, as he again met the governor today and staked claim to form the government, saying that he has majority numbers. Meanwhile, the Indian Union Muslim League, headed by Professor Khadir Mohiddin, has said that his party has not given a letter of support to Tamil Raghavetri Karagam or TVK. In another surprise move, AMMK party leader TTV Dinakaran, a partner in the NDA alliance, has approached the governor Vishwanath Arlekar late evening and submitted a letter of support from lone MLA S. Kamaraj from Manaragudi for AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswamy to form the government. Meanwhile, National Democratic Alliance Chief Ministerial Candidate N. Rangasamy met Lieutenant Governor K. Kailashanathan and staked claim to form the next government in Puducherry. Mr. Rangasamy handed over letters of support from majority of MLAs to the Lieutenant Governor. NDA Alliance MLAs and Alliance leaders accompanied him. Earlier, a meeting of NDA Alliance parties and elected MLAs elected Rangasamy as the Chief Ministerial Candidate. Supreme Court today expressed concern over the rising drug menace in Punjab. The apex court called for a fundamental shift in how the state tackles narcotics, saying that the situation is alarming. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Malia Bakshi referred to a recent incident involving a mother who lost all her 5 sons to drug addiction. The bench also pulled up the state police for focusing on low-level operators for publicity while allowing major traffickers to remain at large. The apex court also highlighted the huge pendency cases lodged under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. The Health Ministry has activated precautionary surveillance measures amid low global risk assessment of Hanta virus cases. Sources said the Health Ministry is closely monitoring the evolving situation relating to reported cases of Hanta virus infection on board the cruise ship MV Hontius. This is being done in coordination with the National Center for Disease Control, Integrated Disease Surveillance Program, World Health Organization, and other international health authorities. Somnath Amrit Parv will be celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The Prime Minister, Narendra Modi, will participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan in Somnath. Speaking to media, Gujarat State Cabinet Minister Jitubhai Vaghani said that various events will be organized at Somnath as part of the Somnath Amrit Parv, showcasing India's rich cultural

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह इन्हीं मीटरों पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।